0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड. अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग।

0: situations or me? किसका प्रभाव किस पर पड़ता है? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा? दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो हम आज देखते हैं कि योगाभ्यास एक इंसान की जीवन का एक पहलू बनता जा रहा है, लेकिन इसकी विधि क्या है, योग और योगा में अंतर क्या है, इसे नहीं जानने के कारण हम योग को ही योगाभ्यास समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम इसकी विधि को जाने तो हमें पता चल जाएगा कि योग क्या होता है, इसे हमें कैसे करना चाहिए। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं, योगाभ्यास के लिए इसकी क्या विधि है। तो योगाभ्यास के लिए विधि और विधान, यहाँ पर हम देखते हैं प्रायः यह माना जाता है कि योगाभ्यास के लिए तो मनुष्य को कहीं दूर जंगल में या गुफा में चले जाना पड़ता है, या अलग थलग एक कुटिया बनाकर और एक रोटियां मात्र ही अपने पास रखकर साधना करनी पड़ती है। लेकिन गीता में इस सत्यता की साक्षी है कि भगवान ने तो ऐसा कुछ भी आदेश निर्देश नहीं दिया है। वास्तव में बात तो यह है कि ये जो हमारा शरीर है, शरीर ही आत्मा की एक कुटिया है। अतः भ्रिकुटी जिसमें कि आत्मा का वास है, एक कुटी अथवा गुहा ही तो है। अतः जंगल में जाकर कंकड़ पत्थर को जोड़कर कुटिया बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुटिया में तो आत्मा पहले से ही है। योगी के लिए विधान यह नहीं है कि वह किसी निर्जन स्थान पर कुटिया बनाकर रहे, बल्कि यह है कि वह अपने मन को निर्जन करे, अर्थात उसने मित्र जन संबंधी जन की बजाय एक परमात्मा परमपिता परमात्मा की स्मृति को स्थापित करे। फिर वह इस सत्यता का मनन करे कि यह शरीर तो एक कुटिया है, मैं इस कुटिया का वासी एक चेतन हाँ आत्मा हूँ। अब हमें चैतन्य में ही आत्मा को कुटिया में महसूस करना है, उसे जानने की कोशिश करनी है कि आखिर वो कुटिया में कहाँ है, कैसे है। यही हमारा परमात्मा के साथ, जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो परमात्मा से हमारा कैसे संबंध होगा, इसे हम इसी विधि से जानेंगे कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है योगाभ्यास के लिए विधि। यदि हम देखते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की भूल यह है कि वह इस संसार को एक मुसाफिर खाना मानने की बजाय अपना देश मान बैठता है और घर को अपना घर समझ लेता है। फिर जब वह उससे लगाव छोड़ना चाहता है तो यहां से निकलकर दूर कहीं कुटिया बनाने की सोचता है। परंतु यदि वह यह समझकर चले कि मैं तो एक यात्री हूं, यह संसार एक मुसाफिर खाना है, आखिर तो मुझे यहां से परम धाम अपने प्यारे घर अथवा देश में जाना है, तो उसमें आसक्ति अथवा मोह नष्ट हो जाएगा और वह भिकुटी अथवा देखो ही अपना शिविर अथवा पड़ाव मानकर तथा स्वयं को इसमें जागती हुई एक ज्योति मानकर उन्नति कर सकेगा। तो यही है योग की विधि। अगर हम ये समझ ले कि इसकी विधि क्या है, तो इसकी विधि के द्वारा ही हम योग की जो एक सफल प्रयास है उसमें संपूर्ण जो उसकी स्थिति है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय है योगाभ्यास के लिए विधि। तो हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि योग के लिए एक अन्य बात की ओर भी ध्यान देना जरूरी है।

हम देखते हैं कि घर की तार को जब बिजली घर से आ रही तार से जोड़ा जाता है, तभी घर की तार में भी करंट आता है। परंतु तार को तार से जोड़ने की विधि यह है कि दोनों के ऊपर से जो रबड़ अथवा प्लास्टिक उतार कर ही धातु को धातु से जोड़ना पड़ता है, वरना यदि रबड़ या प्लास्टिक समेत तारों को जोड़ दिया जाए तो बिजली का करंट और लाइट तथा उसका जो पावर है नहीं आ सकती वहां तक। ठीक इसी प्रकार शरीर भी आत्मा के लिए रबड़ है, प्लास्टिक या चमड़ा ही है। जब एक मनुष्य देह के भान से अगर वो उससे परे होकर रहे तो ही वो आत्मा को समझ सकता है। देह के भान में रहकर परमात्मा को याद करेगा तब तक उसे ईश्वरीय लाइट और पावर की प्राप्ति नहीं होगी। उसकी जो शक्ति है उसकी प्राप्ति उससे नहीं होगी। अतः योगाभ्यास जो भी है, जो इसे करते हैं, एक योगाभ्यासी को चाहिए कि वह इस प्रकार से मनन करे कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, अजर अमर अविनाशी, मैं देह नहीं हूँ। देह तो मेरी कुटिया है, मैं अजर अमर अविनाशी एक आत्मा हूँ। इस तरह अपने को आत्मा समझ कर ही हम इस देह के भान से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार गज के चिंतन से आत्मा देह भान से न्यारी हो जाएगी और तभी उसकी स्मृति रूपी तार परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमात्मा से तार को जोड़ने के लिए हमें अपने देह के भान से निकलना बहुत जरूरी है। अगर हम उसे भी छोड़ते हैं तो हम परमात्मा को भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है। अगर हम कहते हैं कि वो हमारा परम पिता परमेश्वर है, हाँ, अगर हम परमात्मा को परम पिता बोलते हैं तो बच्चे तो अक्सर अपने पिता की तरह ही होते हैं, तो पिता भी तो हमारा वैसा ही है जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु। तो इस ज्योति स्वरूप को हम किस रूप में पहचानने के लिए, अपने कौन से स्वरूप को हमें याद करना है, इसे जानने की बहुत जरूरी है। तभी हम परमात्मा को और उनके साथ अपने संबंध हम जोड़ सकते हैं, अपने पिता के साथ हम अपना संबंध जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद आती है कि कर ले शिव का ध्यान सदा तुत सुख पाएगा। समय बड़ा अनमोल नहीं फिर आएगा, सतयुग त्रेता द्वापर से तू आए पड़ा कलयुग में, खो दे सारी पुण्य की पूंजी, लाया था जो संग में। सत्संग बड़ा है प्यारे, शिव भोलेनाथ पुकारे, भीतर के खोल विकार जो किवाड़ है, ने किवाड़ को खोलना है, भीतर के खोल किवाड़, कुछ पल्ले पड़े तुम्हारे देह भान।

कि छोड़ो धंधे, क्यों बने नैन सुख अंधे, स्मृति रख चलते फिरते तो कटे गले के फंदे। तू रोता क्यों जंगल में, शिव आए तेरे जीवन में, साधारण मनुष्य तन में मुरली सुन मन मधुबन में, तरले शिव का ध्यान सदा तू सुख पाएगा, समय बड़ा बलवान नहीं फिर आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि एक शिव परमात्मा से अगर हमारा संबंध जुड़ जाए तो और क्या चाहिए, यही है हमारी योग की विधि। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला के साथ इन दिनों हम आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, यानी कि मेरी खुशी कितनी बार दिन में ऊपर होती है, कितनी बार नीचे। तो क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि मेरी जो हैप्पीनेस है या मेरा खुशी का जो क्वोशेंट है वो स्टेबल रहे, ये कैसे संभव है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, जब खुशी की बात करते हैं तो एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। हमने बहुत सी बातें की जो जीवन से जुड़ी थी, मेरी खुशी से जुड़ी थी। हमने ये देखा कि खुशी जब लोगों पर डिपेंड कर रही थी कि वो खुश होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बॉस है, तो मैं खुश हो रही थी। अगेन वो डिपेंडेंसी जो थी, और वो कहीं ना कहीं उनका खुश होना या ना होना मेरी किसी बात से मेरा अपना फेलियर बन रहा था, और मेरी अपनी जो खुशी थी वो छिन रही थी। और दूसरा, हमने जो पिछली कड़ी को देखा था उसमें बात की थी मटेरियलिस्टिक चीजों की। दे वर एक्चुअली गिविंग मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस टिल द टाइम यू टोल्ड मी कि वो पर्टिकुलर चीजें खुशी नहीं दे रही, मैं खुशी का थॉट क्रिएट कर रही हूँ। यहीं पर हम बात थी। वंडरफुल। अब यहां तक हम बात पहुंची थी कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया कि ये मुझे मिल गया है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी तक बात ये हो रही थी, ज्यादातर लोग जो हम जो सोचते हैं वो ये कि खुशी एक फीलिंग है, तो क्रिएट करना और नॉन क्रिएट करना थॉट कैसे होगा फिर? सो यहां से आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है?
1: गुड वन। खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? खुशी ऑब्वियसली एक फीलिंग है, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट आई गो थ्रू। अब लेकिन ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए सोर्स तो चाहिए ना। फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है? यस इट्स अ फीलिंग। आई एक्सपीरियंस बहुत सारी फीलिंग्स सारा दिन के अंदर, कभी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कभी आई एक्सपीरियंस पेन, कभी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। लेकिन ये फीलिंग्स किस आधार पर मैं अनुभव करती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन उस पल मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया है।
0: ओके, आई सी अ फ्लावर, बहुत सुंदर एक फूल देखा मैंने।
1: इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, राइट?
0: इट गिव्स मी सो मच ऑफ यू नो लाइक सच नाइस।
1: पहले आप एक थॉट क्रिएट करते हो, कितनी ब्यूटिफुल फ्लावर है,
0: मुझे तो पता भी नहीं कि मैं करती हूँ।
1: अगर किसी को वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा, अब वही फ्लावर आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है। आई मे बी कि मैं उसको क्रॉस करके चले जाऊं और मेरे को कुछ लगे ही ना। फ्लावर तो वही है, मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी। यू नो, आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को देखकर रुककर उसके ऊपर थॉट नहीं क्रिएट किया, तो फीलिंग नहीं जेनरेट हुई। उसके बाद आप रुके, कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया कि ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा कलर, फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, या यू नो कितना वट एवर
0: जो जो लेकिन थॉट्स क्रिएट हम बोलते हैं, हम एक बार फीलिंग आ जाती है उसके बाद हम बोलते हैं,
1: राइट? तो पहले थॉट क्रिएट किया,
0: अच्छा,
1: फिर फीलिंग
0: क्रिएट करना। तो एक्चुअली
1: आप एक दिन उसको ऑब्जर्व करना। क्या होता है, प्रोसेस तो यही चल रहा है, हमें तब रियलाइज आता है आफ्टर इट कम्स आउट इनटू वर्ड्स, राइट? प्रोसेस तो वही चल रहा है। अब उसी टाइम जो हमने पिछली बार भी देखा, वही फ्लावर है, वो फ्लावर अभी तक उतना ही सुंदर है, आप भी उन फूलों के सामने ही बैठे हैं, आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, उससे
0: खुशी देती है। When I buy a new dress, you know,
1: you're wearing a new saree today.
0: Yes. Even I've been talking about my sarees. Actually, if I look at it, yeah. लेकिन जिस वक्त मैं नई साड़ी कुछ ऐसी खरीदूं, या मैं एक नई गाड़ी खरीदूं जो मैं खरीदना चाह रही हूँ कब से, या फिर अगर मैं घर की बात करती हूँ कि घर, इवन बेडशीट्स या इवन पिलो कवर्स, यू नो कई बार, या फर्नीचर, सुंदर सा कुछ खरीदते हैं जो डिजाइनर है, जो बहुत, इट डेफिनेटली गिव्स me happiness.
1: Keep buying every day new things.
0: No, but we can't
1: do that. सही बात है, इट इज ट्रू। एक तो दो लेवल पर हुआ कि एक तो हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को साधनों में जरूर ढूंढते हैं। एक्चुअली तो अगर हम अपनी पूरी दौड़ को देखें, ये जो जर्नी पर हम भागते जा रहे हैं, और ये जो इकट्ठा करने का हमें वो चढ़ गया है, दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन, इवन समटाइम्स एन एडिक्शन, ये भी खरीद लू, ये भी

0: लूं, ये भी आ जाए, फिर हमारी टू डू लिस्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स ही आते जाते हैं, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है. समवेयर आई एम ट्राइंग टू बाय हैप्पीनेस.
1: अच्छा, इनफैक्ट एक और बात है, यू नो व्हेन यू सेड इट्स आई जस्ट क्लिक्ड कि मैंने कोई चीज देखी, सपोज मैंने शोरूम में देखी, सपोज मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट में गाड़ी देखी, कोई मोबाइल फोन नया देखा, कोई ड्रेस देखी, इट स्टेज विद मी. Till the time I buy it, it stays, you know.
0: Yes.
1: And the thought keeps on coming that I have to buy that.
0: Because जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ अटैच हुई, you know. अगर आप अटैचमेंट के बहुत सिंपल लेवल पर देखो, आप मार्केट में जा रहे हो एंड अगर आप एक विंडो को क्रॉस करते हो, एक पर्टिकुलर वहां पे ड्रेस है या गाड़ी है, वट एवर, आपने क्रॉस कर लिया उसको, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी इफ इट इज देयर ऑन योर माइंड, यू आर अटैच्ड. चली गई है, ऑब्जेक्ट चली गई है, बट इट्स स्टिल ऑन माय माइंड. एनीथिंग व्हिच इज ऑन माय माइंड व्हेन इट इज नॉट देयर
1: इज अटैच्ड,
0: माय अटैचमेंट, पीपल ऑन माय माइंड.
1: एक्टर पिक्चर देखने के बाद भी वो हीरो कंटिन्यूस रहता है आपके दिमाग.
0: मेरा माइंड फिर प्रेजेंट में ना होकर
1: हमेशा, हाँ यस,
0: इट इज लिविंग विद दोज पीपल या वो ऑब्जेक्ट्स या वो सिचुएशंस, तो ये कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ती जाती है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, अगर मैंने ये खरीद लिया तो आई विल फील गुड. तो एक तो हमें ऑब्जेक्ट्स को एक बहुत पहले तो बेसिक लेवल पर अगर हम लें कि हम उनको बोलते हैं सुख सुविधाओं के साधन, यू नो, सुख भी सुविधा भी. तो सुविधा डेफिनेटली कम्फर्ट, बट समवेयर कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस को हमने मिक्स कर दिया और सारा प्रोसेस चलता रहा, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये आएगा तो खुशी आएगी.
1: लेकिन इफ आई एम कम्फर्टेबल आई एम हैप्पी.
0: कम्फर्टेबल फिजिकली,
1: नो, अदरवाइज
0: लेट्स लुक एट इट. फाइन, अगर मैं लेट्स लुक एट इट, डज दिस लॉ वर्क फॉर मी, कि अगर मैं फिजिकली कम्फर्टेबल हूँ देयरफॉर मैं खुश हूँ, विल दैट ऑलवेज बी एप्लीकेबल?
1: I feel that way.
0: आज आपके लिए मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है?
1: It feels good, yes.
0: It feels good. और फिर आप उस गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी इज कम्फर्टेबल, वेरी गाड़ी, विच एवर गाड़ी वी हैव, इट्स कम्फर्टेबल. हम पहले 4 लाख की गाड़ी खरीदी, खरीदते खरीदते खरीदते 40 लाख की गाड़ी तक पहुंच गए. ऑफकोर्स फीचर्स
1: बढ़ते,
0: कम्फर्ट्स वो बढ़ते गए, हैप्पीनेस भी उतनी बढ़ती गई, प्रोपोर्शन फ्रॉम 4 लाख टू 40 लाख.
1: No, when I am sitting there, see, I'll tell you. When I am sitting there and I am playing with the gadgets, see, when I was in London, we did that. There was like so many gadgets in the car. I enjoyed them, you know. Yeah, wo happiness
0: stimulant.
1: Yes.
0: स्टिमुलेंट है, एक नवीनता है, एक कुछ एक्साइटिंग है, वो मैं कर रही हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. कितनी देर?
1: हाँ, उतनी देर तक
0: है ना. अब उतनी ही देर में वो कम्फर्टेबल गाड़ी, कम्फर्ट, वो गाड़ी कम्फर्टेबल है और वो हमेशा कम्फर्टेबल रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. लेकिन क्या वो गाड़ी हमेशा खुशी देगी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपन्स इन द वर्ल्ड?
1: नहीं.
0: दिस इज व्हाट वी हैव टू से, कि वो ऑब्जेक्ट किस क्या चीज देने के लिए बना है.
1: वो कम्फर्ट दे रही है, वो बहुत अच्छा स्मूथ ड्राइव कर रही है, वो सब
0: उसका एसी बहुत अच्छा है, उसका एसी बहुत अच्छा है, उसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है. ये चीजें मेरे शरीर को, मेरे कानों को, मेरे कम्फर्ट को, मेरे बैठने के पोस्चर को, मेरी बैक को, ये सब चीजों को बहुत कम्फर्टेबल है. आज कम्फर्टेबल है, कल होगा और हमेशा रहेगा. उसका कम्फर्ट देने का जो इंडेक्स है वो वेरी नहीं करने वाला है. लेकिन डिड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार से कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी इस कार के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा? नहीं. आपका कम्फर्ट लेवल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. जो फीचर उसने आपको सेल किया, उस कार ने, उसने आपको कहा कि जब भी आप इस कार में बैठेंगे आपकी बैक का पोस्चर ठीक रहेगा, तो हमेशा रहेगा ना. हमेशा रहेगा, आप कभी भी उसमें बैठो. लेकिन क्या आप हमेशा खुश होंगे जब आप उस कार में बैठेंगे?
1: लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम खुश हैं.
0: अभी आप ऑफिस से निकले, आपके अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई, अब आप जाके बैठ गए अपनी वो 40 लाख की गाड़ी में, खुश हैं या कंफर्टेबल?
1: नहीं है, खुश.
0: कंफर्टेबल तो है ना, लेकिन
1: तो कंफर्टेबल होते ही मैं थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस बदल सकता है. सी
0: कंफर्ट तो इज नो डिनाइंग कि हमें फिजिकल कंफर्ट चाहिए, लेकिन अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर हम एक ही को प्राप्त करने में लगे रहेंगे. हमने कहा, आपने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इफ आई एम कंफर्टेबल आई विल बी हैप्पी, बट एक्चुअली नॉट नेसेसरी. Not necessary. आज मैं 40 लाख की गाड़ी में भी बैठकर

0: थॉट कि आई एम हैप्पी, मतलब लाइक साड़ी इज देयर, ऐसे तो नहीं हो सकता ना. सी ऑब्जेक्ट है, आपने कहा साड़ी इज देयर, ये थॉट आप नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन ये तो थॉट क्रिएट कर सकते हो कि माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साड़ी. My happiness is not dependent on having achieved buying that object. My happiness is not dependent on what all I have gathered. My happiness is not dependent on what people think about objects which I have achieved.
1: But yeah, so Shivani, happiness is not a thought. It's a feeling.
0: Yeah, so jo thought create hogi, phir to feeling generate hogi na uske baad.
1: This is, we need to talk more about it because whatever we have talked today is actually a very clear indication कि कोई भी object कुछ भी create नहीं करता है. वो comfort दे सकता है, वो मुझे you know like जो उसको देने के लिए जो बना है वो दे सकता है. happiness या कोई भी feeling जो है वो खुद नहीं create कर सकता,
0: उसके पास है नहीं.
1: हाँ, of course this is to we all understand.
0: Yeah, I know we all understand.
1: But ये है कि वो खुशी को अभी तक हम थॉट है ये नहीं मान रहे थे, हमें फीलिंग है, लेकिन थॉट के बाद फीलिंग कैसे आती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. और साथ ही कि वो क्रिएट कैसे करना है जो है ही नहीं, इन द सेंस कि आई थिंक वी नीड टू रियली टॉक मोर अबाउट इट. बट थैंक यू सो मच, आज एक और क्लैरिफिकेशन हुआ कि जिन मटेरियलिस्टिक चीजों को हम सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, और जो वो मुझे इतनी खुशी दे रहे थे, तो ये क्लियर रखना है वो नहीं दे रहे हैं, मैं खुद अपने आप को दे रहा था. You know, somewhere I was giving it to myself. Thank you so much. Shanti. बहुत liberated feel करते हैं. In fact, अभी तो मैं feel कर रही हूँ कि वो कोई नहीं दे रहा था, ना तो object और ना ही कोई situation भी. अगर हम देखें आज पूरी बातचीत में, ना मेरी गाड़ी ने मुझे दी, दे नहीं सकता, दे वो comfort सकता है. Mobile बहुत अच्छे features के साथ मेरा comfortable कर देता है बात करना, या कोई भी और materialistic चीज जो है मैंने create किया उसे खरीदते ही कि मैं खुश हो गई. अगर वो नहीं खरीद पाई तो क्या मैं हर बार यही क्रिएट करूंगी कि मैं खुश नहीं हुई, या कुछ और चीज है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ. अगर मैं उसे नहीं भी खरीद पाई तो मैं कैसे वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ. और वो तो सिर्फ थॉट ही रह गया, वो फीलिंग का बदल बनता है, क्योंकि अभी तक मेरे लिए हैप्पीनेस जो था वो एक फीलिंग है. सो हाउ माई थॉट क्रिएट्स माई फीलिंग, ये एक अलग चर्चा का विषय जिस पर हम बातचीत जरूर करेंगे. लेकिन अभी आज की इस बात से जुड़ी कोई आपके मन में बात उठ रही है, प्लीज फील फ्री, आप हमें जरूर फोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में खुशी के इंडेक्स को देखने के लिए, जांचने के लिए, जहां हमने लो गए वहां हमें हाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा लो हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होती है. इसीलिए उसे स्टेबिलिटी पे कैसे लाना है ये प्रयास चलता रहेगा. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी। जिंदगी में कितने मुकामों से हम गुजरते हैं। कहा जाता है कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम कितने ही कलाकारों का जो पार्ट है वो अदा करते हैं, कितने ही रोल्स निभाते हैं। कभी मैं एक माँ होती हूँ, कभी मैं एक प्रोफेशनल हूँ, कभी एक एंकर हूँ जब आपसे बात कर रही हूँ, या फिर कभी कभी मैं बहुत कुछ और हो जाती हूँ। लेकिन क्या कभी मैंने सोचा कि मैं हूँ कौन? कई बार ये सवाल सर उठाता है और जब ये सवाल ज्यादा सर उठाने लगे तो उसका जवाब तलाशना जरूरी हो जाता है। हु एम आई, मैं हूं कौन? आज इस कड़ी में यही तलाशने की कोशिश करते हैं और इस तलाश में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका हार्दिक स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, कई सारे रोल हम हर रोज अदा करते हैं कि और उसको बखूबी निभाते भी हैं। बड़ी जल्दी हम चेंज भी हो जाते हैं कि मैं एक माँ हूं तो बहुत सॉफ्ट बनी रहूंगी, उसके बाद एक टीचर हूं तो मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगी, एकदम से बाहर निकलूंगी तो कुछ और हो जाऊंगी। लेकिन एक वक्त आता है कि मन पूछता है,
1: कई बार ऐसा होता ना, लेकिन सब कुछ करते हुए, सारे रोल निभाते हुए, कहीं ना कहीं मैं कौन हूं इन सब में से,
0: ये भी पूछता है।
1: यू नो, रोल्स, जैसे आपने कहा हम कलाकार हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो रोल प्ले करने के बाद तो कलाकार को ये पता ना कि मैं कौन हूं जिसने ये रोल प्ले किया। लेकिन हम आजकल रोल प्ले करते करते करते उस रोल के अंदर इतना इंटैंगल हो जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि रोल को ही मैं समझना शुरू कर देते हैं।
0: एक्चुअली ये अच्छे एक्टर्स के साथ कहा भी जाता है कि आप अगर एक फिल्म कर रहे हैं तो आप मानने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वो कहीं
1: बट यू गेट इन टू द रोल है, दे से यू गेट इन टू द रोल, यू फील द रोल, विच इज वेरी गुड कि आप जो भी रोल इस टाइम प्ले कर रहे हैं, जैसे आपने कहा एक एंकर का, गेट इन टू इट कम्प्लीटली, फील द रोल। बट लेकिन जब आप उससे बाहर निकलेंगे,
0: आई शुड रिमेम्बर हु आई
1: एम। यस, जब आप घर पहुंचते हैं देन यू कैन बिहेव लाइक एन एंकर, तब आप एक अलग रोल अडॉप्ट करते हैं। लेकिन हम इतने सारे रोल्स, आप देखिए जो एक्टर्स होते हैं मूवीज में, वो लोग भी प्रायोरिटाइज करते हैं कि एक टाइम पे हम कितने रोल करेंगे। राइट, हम एक टाइम पे दो या तीन मूवीज ही कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रोल वेरिएशन कहीं ना कहीं मेरी अपनी इंटरनल स्टेज पर एक इफेक्ट डालता है। लेकिन हम बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं एंड इसमें से कोई भी रोल ऐसा नहीं है जो मैं आई कैन विदड्रॉ।
0: एक्चुअली अगर हम जिंदगी में देखें तो कोई ऐसा रोल नहीं है जो मुझे अदा पूरी शिद्दत के साथ नहीं करना है।
1: और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, जितने रोल्स मुझे प्ले करने वो बढ़ते जाएंगे। आप पहले सिर्फ एक बेटी थी किसी की, एक बहन थी, फिर आप एक पत्नी बनी, फिर आप एक माँ बनी, फिर आप किसी की चाची बनी, किसी की बुआ बनी, अब आप किसी की नानी बनेंगे, किसी की दादी बनेंगे। तो द रोल्स आर ओनली गोइंग टू गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इतने रोल्स प्ले करते करते वी जस्ट फॉरगेट हु एम आई जो ये रोल प्ले कर रहा है। तो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट इज सेल्फ अवेयरनेस, कि जब सब कुछ करते हुए एम आई अवेयर कि ये कौन है जो ये रोल प्ले कर रहा है।
0: एक बात ये बताइए कि हम इस पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं सिस्टर शिवानी की, कहां से शुरू हो के जब छोटे हैं तो शायद वो अवेयरनेस रहे भी कि हु एम आई, लेकिन जहां जब इतने रोल्स बढ़ते जाते हैं, इंटरमिंगल होते जाते हैं वो सारे रोल्स भी अपने आप में, ये मुझे याद रख पाना जरूरी है। वन इज लाइक वाई आई नीड टू नो, मुझे क्यों चाहिए कि मैं कौन हूं, ये जानना मेरे लिए क्यों इतना जरूरी है। जब मैं इतने सारे रोल्स अदा कर रही हूं, बखूबी निभा रही हूं, उन्हें एंजॉय भी कर रही हूं, तो क्यों जानना जरूरी है मेरे लिए?
1: क्या हम सच में उनको एंजॉय कर रहे हैं? लेकिन आज
0: हाँ, क्योंकि सवाल उठते हैं।
1: हाँ, क्या हम सचमुच में उनको बखूबी निभा रहे हैं? क्योंकि नहीं तो अगर हम सचमुच में उनको उतनी सुंदर रीति निभा रहे होते और एंजॉय कर रहे होते तो देन टेंशन, एंग्जाइटी, वर्ड्स वुड नॉट एग्जिस्ट। यू नो, कहीं ना कहीं हम उनमें इंटैंगल होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को भूलते जा रहे हैं। क्यों ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मैं कौन हूं? अगर एक एक्टर को ये नहीं पता होगा कि मेरी शक्ति क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी इनर क्वालिटीज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, अपनी विशेषता को भी पहचानना, कहीं ना कहीं कोई एक आधी कमजोरी है उसको भी पहचानना, तो अगर सब कुछ जानते हुए फिर मैं रोल प्ले करूं तो शायद मैं वो रोल बहुत अच्छे तरह से प्ले कर सकूं।
0: बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि एक्चुअली इससे क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैं रोल तो निभा रही हूं लेकिन मैं नाराज हो जाती हूं कि मुझसे क्या चाहते हो, तो मैं वही दे सकती हूं जो मुझे
1: मेरे पास है। और ज्यादातर अभी हम

0: प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दूसरा मुझसे क्या चाहता है. यू नो अ गुड मदर अ गुड वाइफ डिपेंडिंग ऑन अगर मेरे बच्चे कहेंगे आई एम अ गुड मदर देन आई एम अ गुड मदर. यू सी अगर मेरे हस्बैंड कहते हैं आई एम अ गुड वाइफ देन आई एम अ गुड वाइफ. तो आई एम ट्राइंग टू बी जो उनके मन में एक सही एक आइडियल पत्नी का जो एक इमेज है मैं उस इमेज की तरह बनने की कोशिश कर रही हूं. मैं शायद वो नहीं हूं और मैं कुछ बनने की और कोशिश कर रही हूं. देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट. यू नो आई एम ट्राइंग टू बी व्हाट पीपल वांट मी टू बी बिकॉज आई वांट टू प्लीज देम.
1: एक्चुअली और उनकी डेफिनेशन है. यू नो हमने डिफाइन किया हुआ है कि एक अच्छी बहू एक अच्छी माँ एक अच्छी स्त्री या एक अच्छा ह्यूमन भी ऐसा डिफाइंड है. उसके ऊपर अगर आप खड़े उतर रहे हैं तो आप अच्छे हैं. तो उस प्रोसेस में ही हमारी पूरी जिंदगी
0: तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप पति के सामने एक कुछ और पर्सनालिटी आएगी क्योंकि वो पर्सनालिटी उनको चाहिए. मदर इन लॉ के सामने एक और पर्सनालिटी आएगी क्योंकि वो उनको चाहिए. प्रोफेशन में जाएंगे वहां कोई और पर्सनालिटी आएगी. अब ये हर फैसेट पे हर एस्पेक्ट पे अगर पर्सनालिटी चेंज होती गई इन द प्रोसेस ओरिजिनल पर्सनालिटी कौन सी थी
1: वो एक्चुअली गुम गई.
0: इट्स लॉस्ट. एंड अब क्या हो रहा है कहीं ना कहीं हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनकी अपेक्षाओं के अनुसार अपने आप को इतना परिवर्तन करते जाते हैं कि अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी कहीं ना कहीं गुम हो जाती है. और मेन चीज ये है कि इतना कोशिश करने के बावजूद सबको खुश नहीं कर पाते.
1: हाँ बिल्कुल. लेकिन यहां एक और मैं बात ये जानना चाहूंगी कि अडेप्टेबिलिटी तो जरूरी है.
0: हाँ
1: क्योंकि हर रोल जो है वो अलग है.
0: अडेप्टेबिलिटी लेकिन नॉट यू नो कि अपनी पर्सनालिटी को जानते हुए उसके अनुसार अडेप्टेबिलिटी. यू नो अगर हमें अपना पोटेंशियल पता होगा अभी हम एडजस्ट करते भी तो हैं तो घुट घुट के करते हैं. मुझे कितना सहन करना पड़ रहा है मुझे दैट्स बिकॉज आई डोंट नो माई पोटेंशियल. अगर मुझे अपना पोटेंशियल अपनी स्ट्रेंथ पता हो तो फिर वो सहन करना एक बोझ नहीं लगेगा. वो एक नेचुरल अडेप्टेबिलिटी है. जैसे पानी बहते बहते जस्ट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू रास्ते में जो आता है अकॉर्डिंगली. वी आर लाइक अ फ्लोइंग रिवर. रास्ते में जो आएगा आई विल जस्ट फाइंड माई पाथ अकॉर्डिंग टू दैट.
1: एक्चुअली ये कहना कितना आसान लगता है लेकिन जब करते हैं तो बहुत मुश्किल है. सबसे बड़ी बात सिस्टर शिवानी जब हम हमारे पास ये सवाल का जवाब तो आया कि क्यों जरूरी है ये जानना कि हु एम आई. लेकिन हम हर बार अवेयरनेस की बात करते हैं.
0: आई
1: बीन टॉकिंग अबाउट इट. हमारा प्रोग्राम ही अवेकनिंग है जागरूक करने की बात है जागने की. कहां से जागेंगे कौन सी सुप्त अवस्था में हैं हम यू नो और कैसे जागेंगे.
0: एंड ये है क्या आखिर अवेयरनेस. बिकॉज ये एक ऐसा शब्द हो गया विच इज रियली कॉट ऑन. एवरीबडी सेज सेल्फ अवेयरनेस. लेकिन सेल्फ अवेयरनेस क्या है. एक छोटी सी बात है. एक शिष्य गुरुजी के पास गए और गुरुजी उस दिन मौन में बैठे थे. तो उस बहुत चात्रक था शिष्य. तो शिष्य ने कहा व्हाट इज अवेयरनेस आप प्लीज मुझे इसका आंसर बता दो तो शायद मेरी जीवन बिल्कुल यू नो मैं मुक्ति की ओर या एनलाइटनमेंट की ओर चला जाऊंगा. तो गुरुजी मौन में थे उस दिन. तो उन्होंने एक कागज लेकर उस पर लिखा अवेयरनेस और उसे दे दिया. तो वो भागता हुआ चला गया. थोड़ी देर के बाद वापस आया. उसने कहा अवेयरनेस तो मुझे पता है लेकिन अवेयरनेस का मतलब क्या है. तो उन्होंने फिर से कागज लिया और लिखा अवेयरनेस इज अवेयरनेस और फिर उसे वापस दिया. वो फिर भागते हुए चला गया. हाँ मुझे आंसर मिल गया. लेकिन थोड़ी देर के बाद जाके रियलाइज किया नो आई हैवंट अंडरस्टूड एंड वापस आए. फिर कहा बट एक्चुअली व्हाट इज अवेयरनेस. तो उन्होंने फिर कागज लिया और उसमें लिखा अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस.
1: ओके नाउ लाइक
0: मीनिंग
1: मेरे सवाल का सेम थिंग.
0: मीनिंग के इसका कोई मीनिंग नहीं है. ये होने की बात है. इट इज नॉट अबाउट व्हाट डज अवेयरनेस मीन. इट इज अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट. यू नो अवेयरनेस सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं लेकिन अवेयरनेस अर्थात एक जागृता एक पहचान एक भान होना चाहिए कि सारा दिन मेरे अंदर क्या चल रहा है. मुझे उसकी जागृता होनी चाहिए. ये नहीं कि मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है. जैसे कि हम कहते हैं मुझे पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है. मुझे पेपर पढ़ना है मुझे टीवी देखना है मुझे मालूम तो होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है. हम अपने बच्चों को कहते हैं मुझे आकर अपनी सारी बात बताओ मुझे पता तो होना चाहिए स्कूल में क्या हो रहा है. अवेयरनेस आई नीड टू बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ विच इज फाइन. सो वी आर अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. वी आर अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन अदर पीपल्स लाइफ. वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन आर लाइफ. मेरे जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में भी पता है लेकिन मेरे अंदर क्या हो रहा है. तो अवेयरनेस अबाउट कि मेरे अंदर सारा दिन क्या चल रहा है.

0: और स्पेसिफिकली जब मैं औरों के साथ इंटरेक्शन में आती हूँ, संबंध संपर्क में आती हूँ, तो औरों के साथ व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपने कुछ कहा, मैंने उस बात को सुना, अंदर लिया, अब उसके साथ सुनने के बाद मेरे अंदर क्या चल रहा है, डू आई हैव अ चॉइस।
1: यहाँ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, यू नो, बिकॉज ये प्रोग्राम हम पूरी सीरीज करते करते व्हेन आई गो आउट एंड व्हेन आई टॉक अबाउट टॉक टू योर सेल्फ, हम ये बात करते हैं कि अपने आप से बात करो, जो ज्यादा जवाब मिलता है वो ये कि अपने आप से बात करने में डर लगता है।
0: डर लगता है इसलिए जैसे जिसको हम नहीं जानते हैं उनसे बात करने में डर लगता है। यू नो, हम कभी मिले ही नहीं है, सपोज आई हैव नेवर मेट यू एंड मैंने बहुत ज्यादा आपके बारे में कुछ मुझे पता ही नहीं है, और तब मैं सोचूं क्या बात करेंगे, और अगर बैठूं भी बात करने तो शायद कोई मैटर ही नहीं मिलेगा किस चीज पर बात करें।
1: ये भी लगता है कि क्योंकि अपने अंदर है तो बहुत इम्पोर्टेंट है,
0: राइट,
1: तो वो कहीं क्या निकलेगा उसमें से,
0: बिल्कुल,
1: तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या कहेगा।
0: हाँ, क्योंकि बहुत समय से देखा नहीं है कोई चीज को, बहुत समय से झांक कर नहीं देखा और अब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। और जैसे हम किसी को पहली बार मिलते हैं, हम बातचीत करते हैं, शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता है बात करने के लिए, दो सेंटेंस तो बात कर ही लेते हैं, आप कैसे हो, आप ठीक हो आज, अगर सामने वाले ने ये भी कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो भी नो प्रॉब्लम, दो सेंटेंस की कम्युनिकेशन तो हो गई ना। इस तरह से कम अगर दिन में दो चार बार रुक के अपने आप से सिर्फ ये पूछा जाए, आप ठीक हो, कोई बात परेशान तो नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: अच्छा, कौन किससे पूछ रहा है?
0: सही बात है।
1: मैं अपने आप में अंदर किससे पूछ रही हूँ,
0: right.
1: मैं मतलब मैं बॉडी तो नहीं पूछ रही,
0: right.
1: कहीं ना कहीं मेरी जुबान पूछ रही है या मैं
0: जुबान भी नहीं पूछते, क्योंकि जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हम इस मुख से बात नहीं करते, हम संकल्पों में बात कर रहे हैं ना। द थॉट विल आस्क एंड द थॉट विल आंसर। सी, इट्स लाइक मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं आज मैं इस बात से परेशान हो रही हूँ, अच्छा कौन है कारण आपकी परेशानी का, टॉक,
1: चलो सल्यूशन निकालते हैं।
0: वाओ, इट्स सो नाइस, या आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, सो हु इज टॉकिंग, थॉट्स ओनली। तो एक थॉट ने क्वेश्चन किया, तुरंत थॉट ने उसको आंसर किया, अब बैठ के चेक करें क्या आंसर ठीक था। जैसे आप अगर आकर मुझे पूछे मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फिर समझाऊंगी ना, वी से काउंसलर के पास हम जाते हैं, काउंसलर समझाता है, नहीं आप ऐसे देखो, आप इस दृष्टिकोण से, और काउंसलर दे सो गुड, यू नो, एक तो वो हमें कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, हमें कभी डांटते नहीं है, हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर एक कोशिश करते हैं कि हमें एक सही दिशा पर लेकर जाएं।
1: यही तो मैं कह रही हूँ कि अपने आप में ये डर लगता है कि हमें अपनी सारी नेगेटिविटी दिखेगी, कि
0: वो एक जब हम सेल्फ टॉक की हम बात करते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव तो हम करते ही आए। मेडिटेशन मीन्स पॉजिटिव सेल्फ टॉक, क्योंकि नेगेटिव नहीं, मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे से तो नहीं होने वाला, या फिर मैं तो हूं ही बेस्ट, मेरे से तो कोई गलती नहीं है, तो ये रियलिटी नहीं है। सेल्फ टॉक मतलब रियली अपने आप को, दोनों साइड्स को, स्ट्रेंथ्स को भी वीकनेसेस को भी पहचानना, फिर उनके आगे डिस्कशन अपने आप से।
1: अंतरात्मा,
0: आत्मा ही तो बात कर रही है ना, आत्मा ही जब सोचने का काम करती है हम उसको मन कहते हैं, एनर्जी है ना, द सोल इज एनर्जी, माइंड इज थॉट पावर, इट्स एनर्जी, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ उसको मन कहते हैं, तो मन ही तो जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं, कॉन्शियसनेस, तो दिस इज द माइंड टॉकिंग। तो माइंड की अगर कोई जवाब ठीक नहीं लगता तो उसको भी तो मैं ही ठीक करती हूँ। अभी भी जैसे सपोज मैं आपसे बात करूँ तो कौन उसको स्वीकार करेगा, कान थोड़ी कुछ कर सकते हैं,
1: माइंड,
0: इट्स द माइंड। अब सिर्फ ये है कि अब आपने मेरे थॉट को लिया और फिर उसको प्रोसेस किया, धीरे धीरे आपको मेरे थॉट की जरूरत नहीं, आप अपने थॉट को लेकर उसको प्रोसेस कीजिए, जब आप खुद को काउंसिल करना शुरू कर देंगे,
1: क्योंकि समवेयर द सोल एक्चुअली नोज ऑल द आंसर्स।
0: जब आप अंदर, क्योंकि एक्चुअली आपकी सिचुएशन को आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, नॉट द बेस्ट काउंसिलर एंड नॉट द बेस्ट साइकेट्रिस्ट, इट इज जस्ट यू एंड गॉड विद यू, यू नो, क्योंकि कोई भी जो एक फिजिकल बॉडी के अंदर है, एक ईगो के अंदर है, वो बहुत ज्यादा मुझे नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक खुद एक बैरियर है उसके पास, क्योंकि हमारा अपना ईगो एक बैरियर होता है। मैं आत्मा जब इस बैरियर से बाहर निकलकर अपने आप से बात करती हूँ या परमात्मा से बात करती हूँ, क्योंकि उसके पास कोई वो बैरियर नहीं है,

0: वो कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल यू नो इट्स लाइक द ट्रूथ. बाकी दूसरों से हम राय ले सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग किसी से हेल्प लेना, किसी से राय लेना, लेकिन द डिसीजन शुड बी माइन.
1: अगेन आई वॉन्ट यू नो वाई वेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैंने जब आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे पता है कि आप मुझसे वाइज हैं, तभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आपके पास जवाब है. क्या मेरी आत्मा के पास मेरे हर क्वेश्चन का जवाब है?
0: क्या मुझ आत्मा के पास मेरे हर क्वेश्चन का जवाब है?
1: आई द सोल.
0: यस.
1: क्या मुझ आत्मा के पास मेरे हर सवाल का जवाब है?
0: हर क्वेश्चन का.
1: अच्छा,
0: हर क्वेश्चन का, क्योंकि आत्मा इज द ट्रूथ. इट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ. इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा सा डोमेंट है. जितना जितना हम उस अवेयरनेस में आते जाएंगे कि दिस इज हु आई एम, ईगो जितना जितना खत्म होता जाएगा, वो आवाज बिल्कुल एक राइट आंसर देगी.
1: ईगो पे भी आते हैं क्योंकि ईगो इज अ बिग इश्यू.
0: देखो सारा दिन में एक्चुअली जैसे हमने मन की बात की, सारा दिन में हम जो काम कर रहे हैं वो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. यू नो हमें अपने हमें किस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज आई वुडंट नो कि बिकॉज अवेयरनेस डजेंट मीन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं. दैट इज नॉट अवेयरनेस ओनली. अवेयरनेस इज सारा दिन मेरे अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है. एक मशीन है एक अंदर जो काम कर रही है, एक प्लांट लगा हुआ है, मेरे को उसका प्रोसेस पता चलना चाहिए. अभी आई एम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट है ये पर्सनैलिटी, प्रोडक्ट है ये व्यवहार, प्रोडक्ट है मेरा आपसे बात करने का तरीका. लेकिन मैं आपसे इस तरह से क्यों बात कर रही हूँ? सपोज आपसे मैं अभी गुस्सा करने लगूं, ये एक प्रोडक्ट है. लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस हुआ है, कोई रीजन है जो मैं आपसे इस समय उस तरह से बात करूं. तो मैं उस प्रोसेस को न जानने के कारण सिर्फ प्रोडक्ट को देखती हूँ और परेशान होते जाती हूँ, इसको कैसे ठीक करूं, मुझे इस प्रोडक्ट को ठीक करना है. प्रोसेस को जानना पड़ेगा.
1: अच्छा, बहुत ही सुंदर. मतलब ये है कि हम जब जो भी हम कुछ रिएक्ट कर रहे हैं या एक्ट भी कर रहे हैं, उसका वो रिजल्ट है जो अंदर हमारे बहुत कुछ चला है.
0: एंड दैट स्टार्ट्स विद द थॉट.
1: ओके.
0: यू नो एवरी प्रोसेस इट स्टार्ट्स विद द थॉट. एंड जैसे ही हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, बिकॉज लेट्स सी द प्रोसेस हाउ इट गोज, कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है. सबसे पहले मन में एक संकल्प उठता है. ना, कोई भी बात आती है सामने, परिस्थिति आती है, आप व्यक्ति आता है, एक संकल्प उठता है. क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इट स्टार्ट्स विद अ थॉट. और जैसे ही एक थॉट आता है, उसका इमीडिएट क्या बाय प्रोडक्ट होगा?
1: एक रिएक्शन.
0: रिएक्शन बाहर आएगा. अगेन देयर इज अ प्रोसेस बीच में. रिएक्शन जो बाहर आएगा, जो एक बोल होगा या एक कर्म होगा, दैट्स द फाइनल प्रोडक्ट.
1: लेकिन यू थिंक कि थॉट इज लाइक स्ट्रेट अवे
0: थॉट इज इनटू एक्शन? नो, thought is not into action. There will be little steps pehle and then wo action ke roop mein aayega. Okay. Hai na? To sabse pehle jab ek thought aati hai, ek sankalp aata hai, immediately depending on wo quality of thought kya hai, ek feeling utpann hoti hai. You know, jaise ek thought aayi ki Kanupriya is a nice person, ek thought hai, and jaise hi wo thought create ki, good feeling.
1: Feeling.
0: I feel like meeting her. Kanupriya is not a nice person. I don't feel like meeting her. इमीजिएट, इमीजिएट है कि मैं अवॉइड करके कहीं और से चली जाऊं, क्योंकि मेरी थॉट आई कि सो जैसे ही एक थॉट उत्पन्न हुई, एक फीलिंग आ जाएगी. इमीजिएट है ये, बहुत फास्ट हो जाता है. और जितनी मेरी सारी फीलिंग्स होंगी आपके बारे में, किसी के भी बारे में, एक समस्या के बारे में, पूरे विश्व के बारे में, तो ऑल माई फीलिंग्स पुट टूगेदर विल डिवेलप माई
1: एक्शन.
0: दैट ऑल्सो लेटर. Just my feelings will develop my what towards you?
1: Attitude.
0: Attitude.
1: Okay.
0: Is it a positive attitude? Is it a negative attitude? Is it whatever kind of an attitude?
1: One thought is going to create a lot of feelings. No. Lot of thought.
0: A lot of time, na? बहुत बार मैंने आपके बारे में सोचा है. देखो attitude पहली बारी में नहीं बनता.
1: It takes time.
0: It takes time. लेकिन कई बार मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, कई बार ऐसा सोचा, तो फिर थोड़े टाइम के बाद एक एटीट्यूड बन गया. ये ऐसे ही है. अब उस एटीट्यूड को चेंज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अब वो बन गया है. सी दैट्स द प्रोसेस. पहले जब थॉट्स था, थॉट को चेंज करना बहुत ईजी है. इट्स जस्ट इन द बिगिनिंग स्टेज. जैसे जैसे वो एक प्रोसेस से गुजरता जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम अ लिटल हार्डर. तो पहले संकल्प आया, जो संकल्प आया वो एक भावना उत्पन्न हुई, एक फीलिंग. एंड सारी मेरी जो भावनाएं आपके बारे में है, दैट डेवलप्स माय एटीट्यूड, मेरी वृत्ति. आपके बारे में क्या वृत्ति है, और जो मेरा एटीट्यूड होगा वो फिर
1: एक्शन.
0: एक्शन चाहे वो एक बोल के रूप में आएगा, एक कर्म के रूप में आएगा, लेकिन वो एक एक्शन के रूप में आएगा. और अगर मैं कोई भी कर्म बार बार रिपीट करती हूँ,

0: कोई भी बोल बार बार करती हो, जैसे गुस्सा करना बार बार बार बार करती हो, तो धीरे धीरे इट बिकम्स माय
1: डेस्टिनी.
0: नो, पहले जस्ट द एक्शन, आई रिपीट इट नंबर ऑफ टाइम्स, इट बिकम्स माय हैबिट.
1: हैबिट है
0: ना, एक आदत बन जाती है. झूठ बोला एक बार, दो बार, चार बार, दस बार, फिनिश्ड. आफ्टर दैट इट्स माय हैबिट. अभी वो करना बहुत नेचुरल हो गया,
1: आसान है,
0: है ना, तो आदत बन गई. और अब जो मेरी सारी आदतें हैं, ऑल माय हैबिट्स पुट टुगेदर इज माय ओवरऑल पर्सनालिटी. दैट्स माय पर्सनालिटी, दिस इज मी. ये मेरी सारी आदतें हैं, ये मैं हूं,
1: ये बाहरी मैं हूं. अब मैं बाहर आने लग गई,
0: अब मैं बाहर आने लग गई ना, आदत से लेकर मैं बाहर आई. एक्शन से, एक्चुअली संकल्प अंदर आया, भावना अंदर उत्पन्न हुई, वृत्ति दृष्टि वो अंदर बनी, फिर जब वो कर्म में आया तब बाहर हुआ प्रोसेस. और कोई भी कर्म बार बार रिपीट किया वो मेरी आदत बन गई, और सारी मेरी आदतें टुगेदर माय पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व, दिस इज मी. और यही व्यक्तित्व फिर जब हर स्टेप पर जाता है, हर रोल प्ले करता है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, कर्म में जाता है, ऑफिस जाता है, घर जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटी एट एवरी स्टेप, देन आई विल क्रिएट माय डेस्टिनी, मेरा भाग्य. जो अभी तक हम समझते थे कि मेरा भाग्य कहीं और से कंट्रोल होता है, कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या है, या भगवान ने पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, हमारा भाग्य हम खुद निर्माण करते हैं,
1: हमारे अपने एक थॉट से आता है.
0: बिल्कुल, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी. कितना सिंपल है. और जब ये समझ में आ जाता है कि हर जो संकल्प हम कर रहे हैं वो मेरा व्यक्तित्व निर्माण कर रहा है, और जैसा मेरा व्यक्तित्व होगा वो मेरा भाग्य निर्माण करता है. आप देखो, कोई भी स्टेप पे आप उस समय जो डिसीजन लेंगे, आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है. आप किसी से मिले, उनका मूड अच्छा नहीं था, अगर आपकी भी संकल्प उस टाइम नेगेटिव है और आपने भी गुस्सा कर दिया, दूर हो गए, भाग्य बदल गया. अगर आपने उस टाइम उनको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उनसे प्यार से बात कर ली, जुड़ गए, भाग्य परिवर्तन हो गया एक संकल्प से. दिस इज सेल्फ अवेयरनेस.
1: हियर आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हम ये बात कर रहे हैं कि एक थॉट या थॉट्स जो हैं वो हमारी डेस्टिनी तक एक पूरा प्रोसेस है, उसमें कुछ अंदर चल रहा है, कुछ बाहर तक आ जाता है, आदत से आके हम बाहर आते हैं. एक बात ये भी कही जाती है कि नेगेटिव, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव थॉट,
0: राइट,
1: यू नो, ये तो एक समझ में आती है बात. आई मेट अ पर्सन जो कहता है कि नेगेटिव थॉट्स, मुझे उससे जेलसी थी, तो मुझे लगा कि उसको गाड़ी चलानी आती है, तो मैं मेरे को क्यों नहीं आती, तो मैंने इससे मेरा प्रोसेस शुरू हुआ, मैंने तो इतनी सर, इट वॉज अ नेगेटिव थॉट, उसने गाड़ी चलानी सीख ली, और तो रिजल्ट तो उसने मुझे जो जवाब दिया वो कहता है कि रिजल्ट तो मेरा ये हुआ कि मैं गाड़ी चलाना तो सीख गया इस पूरे प्रोसेस.
0: वो एक अलग बात है, एक इंस्पिरेशन और जेलसी में अलग बात हो गई. आपको कुछ आता है, जैसे कहा आपको गाड़ी चलानी आती है, एंड इफ आई टेक इट एज एन इंस्पिरेशन. देखो, सी दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस, कि आपने बाहर गाड़ी चलानी तो सीख ली, लेकिन अंदर का मोटिवेटिंग एनर्जी की क्वालिटी क्या थी. सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, बाहर तो हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं आज, लेकिन अंदर क्या हो रहा है.
1: और एक्चुअली अंदर वो पूरा ही फिर प्रोसेस जो है, क्योंकि वो जेलसी जो थी वही एक नेगेटिविटी और बढ़ती गई होगी, डेस्टिनी क्रिएट हुई.
0: तो आपने गाड़ी तो सीख ली, लेकिन शायद उस व्यक्ति से बहुत दूर हो गए, और अपनी क्वालिटी ऑफ एनर्जी जो अंदर उत्पन्न हुई उसकी क्वालिटी क्या थी. तो उसने मेरी स्टेट ऑफ माइंड को उन कुछ दिनों के अंदर कैसा बना के रखा होगा. तो मेरी खुशी, गाड़ी भी क्यों सीख रहे हैं, एक्चुअली खुशी देगी, लेकिन उसका मोटिवेटिंग फैक्टर ही खुशी नहीं है. तो समवेयर डाउन द लाइन इट वोंट गिव मी दैट हैप्पीनेस दैट आई एम लुकिंग फॉर. एक इंस्पिरेशन के रूप से अगर उसको ले लेते, सेम चीज, उसको एक इंस्पिरेशन के रूप से ले लेते, देखो इनको गाड़ी आती है, कितना आराम से ये हर जगह जा सकते हैं, मैं भी अगर गाड़ी सीख लूं तो मेरी लाइफ भी बहुत इजी हो जाएगी. एंड लुक एट देम एज एन इंस्पिरेशन, जस्ट अ माइंड शिफ्ट, नथिंग एल्स, बाकी सारा कुछ सेम रहता है, जस्ट द क्वालिटी ऑफ द रॉ प्रोडक्ट.
1: सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक इट एक्चुअली व्हेन आई टॉक हियर मुझे लगता है बहुत आसान है, लेकिन द मोमेंट यू स्टेप आउट, नो आई एम टेलिंग यू, इट बिकम सो डिफिकल्ट, बिकॉज नेगेटिविटी डज कम, नेगेटिव थॉट आता ही है. और हम अपने आप को, हमारे सारे दर्शक भी कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि हम इतना सुनते आ रहे हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन वो बाहर से तो पॉजिटिव

0: करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इंटरनल प्रोसेस जो है
1: वो, क्योंकि हमें जैसे आपने कहा नेगेटिव थॉट तो आता ही है, नेगेटिव थॉट का सोर्स क्या है? संकल्पों को परिवर्तन करने के लिए संकल्प का स्रोत पता होना चाहिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय थॉट्स। थॉट्स किस चीज से उत्पन्न हो रही हैं? तीन फैक्टर्स प्ले करते हैं। एक तो पास्ट एक्सपीरियंस, अगर मैं कई बार आपसे मिली हूं और क्या मेरा अनुभव रहा है पहले, तो वो अनुभव के आधार से जब आप अब सामने आएंगे तो वही थॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस थॉट्स को क्रिएट करते हैं।
0: तो पहला अनुभव जो है वो काफी करते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन एट टाइम्स,
1: दैट्स व्हाई, बिकॉज वो फर्स्ट इम्प्रेशन इतना डीप हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आई डोंट टेक द ट्रबल ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू इम्प्रेशन। इट्स एक्चुअली नॉट रियली फर्स्ट इम्प्रेशन, लेकिन हम एक नया इम्प्रेशन क्रिएट ही नहीं करते, हम उस फर्स्ट इम्प्रेशन के आधार पर ही चलते हैं, धीरे धीरे वो बहुत पक्का हो जाता है। सेकेंड सोर्स इज इन्फॉर्मेशन, हम सारा दिन चारों तरफ से जो सुनते पढ़ते हैं भरता जाता है, एंड टूडे द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नेगेटिव। न्यूज पेपर उठा लिया, ज्यादातर नेगेटिव, टेलीविजन ऑन कर लिया, लोगों से बात भी कर ली तो बातें भी ज्यादातर नेगेटिव। तो अगर भोजन की क्वालिटी नेगेटिव होगी तो उससे जो शक्ति निर्माण होगी वो नेगेटिव होगी। और तीसरी है बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं, हम क्या मान्यताएं लेकर इस जीवन में चल रहे हैं। तो वो तीन फैक्टर्स, पास्ट एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन एंड बिलीव सिस्टम, ये तीन चीजों के आधार पर संकल्प उत्पन्न होते हैं। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो इन तीनों में से चेक करना पड़ेगा।
0: ये हमारे ही हाथ में है कि हम कैसे चेक करें,
1: इसको हम चेक करते हैं। अगर लाइक सबसे सिंपल है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दें, बिलीव सिस्टम को चेक करके चेंज करना शुरू कर दें, थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाएगी।
0: बिल्कुल, लेकिन सिस्टर शिवानी एक और बात यहां पे, क्योंकि अब वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम एक बार अवेयर हो गए, अगर हम जान गए कि ये पूरा प्रोसेस जो हमारे अंदर भी चल रहा है, देयर इज अ टॉक विद इन अस, उसको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है, क्यों तब भी उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती
1: है? मतलब ये है, चल रहा है, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको कभी कभी फॉलो नहीं करते, क्योंकि बीच में जो चीज आ जाती है वो है ईगो, अहंकार, अहम। मुझे समझ भी आ रहा है कि मुझे इस टाइम गुस्सा नहीं करना चाहिए, समझ आ रहा है, दैट इनर वॉइस इज टेलिंग मी डोंट, इट्स वेरी डैमेजिंग, लेकिन क्यों मैं गुस्सा क्यों नहीं करूं, दैट अहंकार, ईगो, अहम, ये बीच में आ जाता है।
0: वंडरफुल। सो ईगो अगर देखा जाए आज के वक्त में, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है।
1: हाँ, सबसे बड़ा।
0: आज हमने उन इश्यूज को समझा जो जहां से शुरुआत करनी है, मैं सामने आया कि हु एम आई एंड हाउ टू बी अवेयर ऑफ माई सेल्फ। तो सचिवानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: आपको बताना चाहें कि हु एम आई आज हमने तलाशने की कोशिश की, हमने ये भी जाना कि किस तरह से पॉजिटिव थॉट मेरी डेस्टिनी लिख सकते हैं। कुछ हमारे अंदर चल रहा है, कुछ बाहर आता है। जो अंदर चल रहा है, पॉजिटिव थॉट जनरेट किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें पॉजिटिव थॉट जनरेट करना चाहिए। ये एक पूरा प्रोसेस है, वक्त लगेगा, एक सेकंड में नहीं होंगी चीजें, लेकिन हमें पहला कदम तो उठाना ही होगा। हो सकता है आपके पास कोई सवाल हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर अगली कड़ी में जानेंगे कि ईगो को कैसे कॉम्बैट करें, ईगो से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपनी ईगो को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दीजिए इजाजत, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी से फिर होगी मुलाकात।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चलें।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या? यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, बचपन में आप सबने कागज की नाव तो जरूर बनाई होगी और उस नाव को पानी में तैरने के लिए छोड़ा होगा, और उस नाव को जब पानी में छोड़ा तो आपने कई सारे उसमें उम्मीद भी लगाई होगी कि ये नाव वहां तक तो जरूर पहुंचना चाहिए, किसकी नाव किससे ज्यादा आगे बढ़ती है, या नाव नहीं तो कम से कम प्लेन तो जरूर उड़ाया होगा। लेकिन कागज को मोड़ मोड़ के, उसको फोल्ड करके कितनी कुछ चीजें हमने बनाई है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है इसके पीछे का विज्ञान, और इसको करते समय व्यक्ति के अंदर कितना उसका ध्यान परिपक्व हो सकता है। केवल एक इस विधा को पकड़ के अगर कोई व्यक्ति ऐसे शिखर पे पहुंच जाए जहां पर उसे राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाए, तो क्या खूब होगा अगर हम उनसे बात कर सके। 107.8 रेडियो मधुबन में आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम, और आज मैं आरजे शांतनु आपके बीच में लेके आया हूँ एक ऐसी ही हस्ती को। आज हमारे बीच में है मेरठ से मोहम्मद मतीन अंसारी जी। मोहम्मद मतीन अंसारी जी वास्तव में है तो एक अध्यापक, लेकिन उनकी नवीनता, उनके इनोवेशन की वजह से और उनका ओरिगामी या पेपर फोल्डिंग क्राफ्ट के पीछे उनका जो ये लगन है, उसकी वजह से उनके इनोवेशन ने उनको आज देश के उच्चतम और श्रेष्ठतम शिक्षकों में दर्जा दिया है। और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में मोहम्मद जी हैं हमारे बीच में। तो आइए हम पहले स्वागत करते हैं मोहम्मद जी का। मोहम्मद मतीन अंसारी जी, जो एक बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षक हैं हमारे भारत राष्ट्र के, आज हमारे बीच में रेडियो मधुबन के स्टूडियो में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद जी, नमस्कार।
4: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं इस रेडियो कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे बोलने और पब्लिक से बात करने का मौका दिया है। जी, आगे जो आप पूछना चाहते हैं आप पूछिएगा, बात को जारी।
3: मोहम्मद जी, सबसे पहले तो हम आपसे ही पूछना चाहेंगे, आपकी कहानी आपकी जुबानी, कैसा रहा आपका बचपन, कैसे ओरिगामी की तरफ आपका रुझान गया, कैसे शिक्षण को आपने अपना व्यवसाय या अपना प्रोफेशन बना लिया, और ये जो आपकी कहानी आपकी जुबानी है यही हम सुनना चाहेंगे सबसे पहले।
4: दरअसल मुझे जो था शुरू से ही एक लगाव था कि शिक्षक बने तो कम से कम ऐसे शिक्षक बनना चाहिए कि आम जो शिक्षकों के प्रति लोगों में धारणा होती है कि शिक्षक नहीं काम नहीं करते, तो वो चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए कहीं भी। मैंने हमेशा जो काम किया बहुत लगन से किया, जिस स्कूल में मैं हूँ उस स्कूल में मैंने उसे जितना उसमें मैंने काम किया है, और अधिकारियों ने मेरे काम को, जिले के अधिकारियों ने भी देखा, मंडल स्तर के अधिकारियों ने भी देखा, और प्रदेश स्तर के अधिकारियों ने भी देखा। एक वक्त था कि हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक की टीम आई और उन्होंने हमारे विद्यालय का निरीक्षण किया।

0: वाला कोई भी पैसा अगर हम उसे ठीक यूज करते हैं, स्कूल में लगाते हैं, बच्चों पर खर्च करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कहीं भी उन्होंने कहा कि और भी हमने स्कूल देखे, लेकिन आपका स्कूल एक अलग ही है। मैंने कहा जी बस वो मेरी अपनी एक मेहनत है, अपनी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्कूल पूरे जिले में पूरे जो लोग देखें वो ये कहना कि हाँ यहाँ बात ही अलग है। अगर सब जैसे स्कूलों की तरह मैं काम करूंगा तो फिर मुझे मेरी पहचान अलग तो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने उसी तरह से काम किया है। बिल्कुल स्कूल का बिल्कुल टाइम देना, बच्चों के साथ काम करना, और स्कूल के अलावा भी दूसरे जनपदों में अलग अलग जगह जाकर मैंने साइंस के प्रोग्रामों में, मैथमेटिक्स के प्रोग्रामों में, ओरिगेमी के प्रोग्रामों में मैंने हिस्सा लिया है। बहुत सारे टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई, स्टूडेंट्स से हुई, तो इस तरह से मैंने अपने आप को अपने स्कूल तक ही सीमित नहीं रखा। तो मैं लेकिन मैंने जो है दूसरे जिलों पर, जो दूसरे राज्यों में भी हमने इस काम की इतने इस तरह के कामों को किया है कि हमारी पहचान जो है वो हमारे जिले से हटकर मंडल, स्टेट और हमारे राज्य, हमारे राष्ट्र के अंदर भी हमारी एक पहचान बने। और मैं समझता हूँ कि हम इसमें सफल रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के करने से, उन्हीं के हमें समझाने से हम आगे तक बढ़ पाए। जी
1: मोहम्मद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि शिक्षक बनने का आपको रुझान क्यों हुआ? क्योंकि जनरली जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने आसपास में देखते हैं, तो बस वही शब्द सुनते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। टीचर बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। और कई बार अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो भी नहीं चाहते कि बच्चे टीचर बने, क्योंकि शायद इसमें इतना ग्रोथ नहीं है, इतनी उन्नति नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपको ये लगन लगे कि मुझे एक शिक्षक ही बनना है?
0: ये देखिए, शिक्षक जो है वो एक, जैसे कहा जाता है कि समाज का निर्माता है। हम किसी भी, जो डॉक्टर बन जाए वो डॉक्टर तक सीमित रहता है, एक अधिकारी बन जाए वो अपने अधिकारिक कार्यों तक सीमित रहता है, एक इंजीनियर बन जाए वो अपने इंजीनियरिंग के बनाने, पुल बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सब चीजें बनाने में सीमित रहता है। लेकिन हम जो काम करते हैं, जो शिक्षक काम करता है, वो बच्चों के साथ लगा हुआ है। वही बच्चे आने वाले समय में, भविष्य में अलग अलग तरहों पर, अलग अलग जगहों पर वो जाएंगे, कोशिश, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो इस तरह से शिक्षक को कहा गया है कि एक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक के द्वारा जो बच्चे हैं, शिक्षक का जो संपर्क है बहुत बड़े समाज से, समाज के बच्चों से, वो बच्चे आगे चलकर, शिक्षक तो शिक्षक ही रहता है लेकिन उसके पढ़ाए हुए बच्चे आगे जाने क्या क्या बन जाते हैं और किस किस पदों पर चले जाते हैं। और जब शिक्षक को एक पता चलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अलग जगह पर अधिकारी बन गया है, वो इंजीनियर बन गया है, वो ये, तो उसे बड़ी खुशी होती है। यही चीज शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चीज है, मैं समझता हूँ।
1: तो बचपन से ही आपको शिक्षक ही बनना था?
0: वो तो मेरा शौक था कि भाई मैं शिक्षक बनूं और समाज की सेवा करूं, और ऊपर वाले ने मुझे बना दिया।
1: तो जैसे आपने बताया कि बचपन से ही आपका शौक था कि आप शिक्षण की दिशा में जाएं, और आपको उसके पीछे एक कारण भी दिखा कि एक शिक्षक जो है वो सर्वांगीण रीति किसी बच्चे के साथ जुड़ पाते हैं, जबकि कोई दूसरा पेशेवर जो होता है, जैसे डॉक्टर हुआ या इंजीनियर हुआ, उसका जो वो कनेक्शन है वो समाज में बहुत एक तरफा है, जो उनका काम उससे ही है। लेकिन एक शिक्षक जो है वो हर प्रकार से समाज को बेनिफिट देता है। जब आपने शुरुआत की शिक्षण की, तो जैसे हर शिक्षक होता है उसको एक सब्जेक्ट मिलता है, एक विषय मिलता है पढ़ाने के लिए, और वो उस विषय को लेकर के ही फिर पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहते हैं, कई सालों तक वो पढ़ाते रहते हैं। लेकिन उनसे अलग हट करके, उस विषय से अलग हट करके कुछ नया करना, कुछ नई चीजें अपने विषय में जोड़ना, या विषय से बिल्कुल ही अलग कोई चीज करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने कैसे किया?
0: मेरा यही प्रयास रहा, मैं जब भी मैंने कोई काम किया, मैंने यही चाहा कि ये काम जो अब से पहले लोगों ने किया है उनसे अलग ही दिखना चाहिए। मेरी हमेशा एक यही सोच रही है, और इसी यही सोच मुझे अपने विभाग में एक अलग दिखाती है। मैंने कोई भी काम किया, कभी भी किया, किसी भी तरह से,

0: तो अधिकारी ने देखा अरे इसने ये इस काम को जो है वो अलग तरीके से कर दिया। अभी अभी पिछले महीने शुरू हुई थी ट्रेनिंग मैथमेटिक्स की, और अभी इस महीने लगभग 12 तारीख तक खत्म हुई, लगभग 30-40 दिन तक वो चली। तो उसके अंदर कुछ एक विज्ञान किट के बारे में बताना था। विज्ञान किट हमारी गवर्नमेंट ने जो है NCERT ने बनाई है और स्कूलों के अंदर पहुंचाई है। उसकी ट्रेनिंग थी, टीचर्स को देनी थी, तो वहां मुझे डाइट में लगाया गया। तो मैंने देखा कि जिस आइटम के अंदर वहाँ जो हमारी गाइडलाइन NCERT ने दी है, उन्होंने मान लिया किसी एक आइटम के बारे में दो चीजें लिख दी, तो इस आइटम से हम ये दो चीजें बच्चों को बता सकते हैं। तो मैंने उसको देखा, मैंने उसके अंदर दो की जगह कई चीजें अपनी तरफ से जोड़ी, उनकी अभी भी मैं वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। मैं पांच तरह की चीजें उसके अंदर शेयर कर चुका हूँ और अभी भी दो तीन चीजें मेरे दिमाग में है। तो मैं यही चाहता हूँ, बस ये मेरी सोच है कि चीजें अलग अलग दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें बस कोई चीज एक बता दी गई तो हम उसी तक सीमित रहें। तो मैं हमेशा अलग अलग तरह से सोचता रहता हूँ और उन चीजों को मैं करता रहता हूँ। मैथमेटिक्स को मैंने ओरिगेमी से इसलिए जोड़ा है कि बच्चे क्योंकि कलरफुल चीजों को बनाने में बहुत रुचि रखते हैं। बच्चे उसे जब भी पढ़ने की बात की जावे, कुछ रटने की बात की जावे, तो नहीं रट पाते, नहीं याद रख पाते ना, अब रटने का योग भी नहीं है। लेकिन जब हम बच्चों से कोई कलरफुल चीजें बनवाने की बात करते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम उन्हें कह देंगे कल जब हम ये चीजें बनवाएंगे इस तरह के कलरफुल, तो अगले दिन स्कूल के अंदर बच्चों की उपस्थिति ज्यादा हो जाती है और बच्चे उन चीजों को बनाने में आनंद लेते हैं। उसी चीज का वो हमने फायदा उठाते हुए मैंने ओरिगेमी की बहुत सारी चीजें मैंने बनाई, बहुत सारे आइटम्स मैंने बनाए, लगभग मैंने 150 आइटम के लगभग मैंने उन चीजों को बनाया।
1: तो ये ओरिगेमी क्या आपको पहले से आता था या आपने सीखा?
0: नहीं, मैंने सीखा सर, भी पहले से नहीं आता था ये। मैं 86 में मेरी अपॉइंटमेंट हुआ और 86 से 2005 तक मैं जो स्कूल के टॉपिक्स थे मैं उन्हीं में लगा रहा। लेकिन 2005 में हम साइंस के जो गतिविधियां थी, एक्टिविटीज थी, उनसे हम जुड़े और दूसरे जनपदों से भी हम जुड़े। उस दौरान हमने ओरिगेमी का प्रशिक्षण लिया और ओरिगेमी का प्रशिक्षण लेने के बाद फिर मैंने ओरिगेमी के बारे में काफी काम किया, बहुत चीजें मैंने सीखी। और ये देख मैंने उन चीजों को मैंने सेलेक्ट किया कि जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकती थी ओरिगेमी।
1: जैसे मसलन अगर कुछ आप बताएं,
0: जैसे आपने शुरू में बताया कि कागज की नाव से हम एक पाइथागोरस थ्योरम को समझा सकते हैं।
1: कागज की नाव से ये तो बड़ा ही विचित्र है।
0: हाँ, बहुत बहुत सिंपल है। इससे मैंने एक बार अपने यूपी लेवल में के जो एक वो होता था पाठ योजना कार्यक्रम, उसमें मैंने स्टेट लेवल पर एक पुरस्कार भी मुझे उसमें मिला हुआ है। तो उसमें कागज की जो हम नाव बनाते हैं, जब उस नाव को हम वापस खोलते हैं, उसी पेपर की शेप में हम वापस खोल लेते हैं, तो हमें बहुत सारी शेप्स दिखती हैं। उन शेप्स में वर्ग दिखते हैं, आयत दिखती हैं, त्रिभुज दिखते हैं, समलंब दिखते हैं, समांतर चतुर्भुज दिखते हैं, बहुत सारी आकृतियों की हम बात बच्चों से कर सकते हैं। लेकिन उसी के अंदर एक जो सबसे मेन चीज है वो है पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम को भी हम उस पेपर से, क्योंकि उस पेपर के अंदर जब हम उसे खोल लेते हैं तो बहुत सारे फोल्ड आ जाते हैं, और उन्हीं फोल्ड के बच्चों को समझाते हुए, बच्चों से बात करते हुए हम पाइथागोरस के थ्योरम को बहुत आसानी से समझा देते हैं बच्चे को।
1: ये तो कमाल की बात है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो हमने भी पढ़ा है और नाव तो हमने भी बनाया है, लेकिन नाव का पाइथागोरस थ्योरम से ये जुगाड़ कहेंगे या ये जो कनेक्शन है, ये कभी हमने नहीं सोचा था। मैं अभी सोच रहा हूँ काश मेरे बचपन में आपने मुझे पढ़ाया होता तो शायद गणित में बहुत अच्छे से पढ़ चुका होता, या मेरे जैसे कई विद्यार्थी जिनको गणित डिफिकल्ट लगता होगा, कठिन लगता होगा, उनको मजा आता जाए शायद पढ़ने में।
0: जी जी जी। एक बार मैं एक डाइट में मुझे बुलाया गया कि आप अपनी कुछ चीजें यहाँ के स्टूडेंट को शेयर करो। तो मैं कुछ चीज थोड़ा सा आइटम ले गया वहाँ पे जाकर, मेरा 1-1.5 घंटे तक मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। तो वहाँ जब बाद में बच्चों से कहा गया कि भाई आप ये बताइएगा, आपने अपने व्यू दीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आपने क्या सीखा, तो सबने अपनी अपनी तरह के

0: बच्चों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन एक लड़की उठी और उठकर जब वो माइक पर आई तो वो रोने लगी। अरे हमें बड़ा अजीब सा लगा, लड़के रोने क्यों लगी? तो उसने खैर खामोश होने के बाद फिर ये कहा कि अगर मुझे ऐसे टीचर मिलते तो मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ती। मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे इस तरह के टीचर नहीं मिल पाए। तो मुझे वो चीज, वो सेंटेंस वो आज भी याद है कि उस बच्ची ने एक इतनी अच्छी बात उस वक्त कह दी और इस तरह से ऐसे अंदाज से कह दी कि मुझे भूल नहीं पाया।
1: तो आपको क्या लगता है मोहम्मद जी की लोग गणित से इतने डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं?
0: गणित से घबराने की वजह ये है कि उनको स्टार्टिंग में जो है अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं किया गया। अगर हम हाई स्कूल तक के मैथमेटिक्स को बच्चों को बहुत अच्छे से समझा दें, मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि हमें उसे ठीक से समझाया नहीं गया। अगर कोई चीज हमें समझाई नहीं जाती, उसको स्टार्टिंग में नहीं समझाया जाता, तो फिर हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है। बस यही है। अगर उसे बच्चे को प्रारंभिक जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, खासतौर से 6 से 10 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड अगर बच्चे को जो चीजें वो सीखना चाहता है उसे सिखाई जानी चाहिए। अगर वो खेल खेल के माध्यम से सिंपल वे में उसको क्लियर हो जाए। मैंने ये देखा है कि मैं इंटर के बच्चे से ये पूछता हूँ कि भाई जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, तो वो बच्चे बता ही नहीं पाते। बस उन्हें ये तो मालूम है कि हाँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, सूत्र है, उन्होंने सूत्र रट लिया। लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, तो नहीं बता सकते। वही चीज अगर हम ओरिगेमी के माध्यम से पेपर कटिंग करके अगर बच्चों को हम उसे उस लेवल पर, जब वो जूनियर लेवल में था, 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में वो बच्चा था, अगर हम वही उसे समझा देते तो वो आगे चलकर जो है वो उसी चीज को दिमाग में बस जाती। क्योंकि इस तरह की जब चीजें किसी TLM के माध्यम से, किसी एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को बता देते हैं, वो कभी नहीं भूलते। लेकिन जब मैं 6-7 में था, हमारे एक टीचर ने हमें ठोस का फैलना, गर्म होने के बाद ठोस फैलता है, ठंडा होने के बाद सिकुड़ता है, उन्होंने हमें गर्म करके और रिंग के ऊपर उस गोले को रख के दिखाया। पहले उसे ठंडे को जो है रिंग के अंदर डाल के दिखाया, वो रिंग के अंदर से गुजर जाता है, लेकिन जब वो उसे गोले को गर्म कर लेते हैं फिर रिंग के में डालते हैं तो वो नहीं गुजरता। ये मुझे आज भी याद है। अगर बच्चों को उसी पीरियड में जो उनका स्टार्टिंग वाला पीरियड है, वहाँ अगर चीजों को सिंपल वे में एक प्रयोग करके चीजों को दिखलाकर बता दी जावे, समझा दी जावे, तो मैं समझता हूँ कि साइंस भी आसान है और मैथमेटिक्स भी आसान है। मैथमेटिक्स के अंदर खेल की चीजें बहुत है।
1: जी, तो श्रोता साथी, जो भी आप सुन रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे या आप खुद भी, मैं समझता हूँ कई सारे बच्चे हमारे रेडियो मधुबन से जुड़े हुए जो सुन रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि गणित तो बड़ा कठिन है या गणित और विज्ञान के नाम में ही थोड़ी सी सरसेंगी और कपकपी आनी शुरू हो जाती है, भले महीना गर्मियों का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े डर रहे हैं इन दोनों विषयों से या किसी भी विषय से, तो आप अपने शिक्षक को जाकर के पूछिए कि मुझे इसे अच्छे से समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया है। और जो शिक्षक सुन रहे हैं या जो बड़े सुन रहे हैं आज इस कार्यक्रम को, मैं समझता हूँ मोहम्मद मतीन जी ने एक बहुत सुंदर हमें प्रेरणा दी है कि शुरुआती दौर में ही अगर बच्चों को, प्रारंभिक दौर में ही बच्चों को अगर प्राकृतिक रूप से जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक है, कुछ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो उनको आंखों के सामने अगर आप प्रत्यक्ष दिखा सके, तो उस चीज को वो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे नाव के जरिए पाइथागोरस थ्योरम समझा सकना या किसी और ओरिगेमी के माध्यम से कठिन कठिन गणित के प्रसंगों को समझा देना, ये मोहम्मद जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपनाया है और ये अपने आप से आया नहीं है दोस्तों, जैसे उन्होंने बताया उन्होंने सीखा है। तो एक शिक्षक होने के बावजूद भी एक अच्छे शिष्य की तरह उन्होंने प्रशिक्षण ली है ताकि वो अपने शिक्षण में अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को वो शिक्षा दे सके जो उनके न केवल अंदर में जो ये घबराहट है इसको तोड़े, लेकिन साथ ही साथ उनको उस विषय में रुचि भी डाल सके। मोहम्मद जी, मुझे एक चीज जानना होगा कि यहाँ पर जैसे कई शिक्षक हैं जो कई बार सोचते हैं कि ये तो मेरे करिकुलम में नहीं है, ये तो मेरे जॉब में है ही नहीं, ये तो मुझे पूछा नहीं गया है, तो मैं इस पे क्यों इतना जोर डालूं, मुझे तो चैप्टर

0: चैप्टर टू चैप्टर थ्री खत्म करना है। चैप्टर वन और चैप्टर टू के में क्या और चीजें मैं नया कर सकता हूँ, ये सोचने के लिए आवश्यक होता है कई बातें। कौन सी बातें आवश्यक होती हैं कि एक शिक्षक जो है अपने मौजूदा कार्य क्षेत्र से बाहर निकल कर के कुछ अधिक करे, इसके लिए आवश्यक किन चीजों की है एज ए शिक्षक?
1: देखिए, शिक्षक के लिए ये जरूरी है कि वो जितना उनका सिलेबस है उस सिलेबस से ज्यादा चीजों को स्टडी करे। बहुत जरूरी है। अगर हम केवल सिलेबस तक के ही सिलेबस के अंदर मान लिया 10 चैप्टर हैं और हम 10 चैप्टर तक ही सीमित हैं तो हम बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड नहीं करते। हमें 10 चैप्टर को कराने के लिए कम से कम 50 चैप्टर हमें समझने चाहिए। अगर हम विस्तृत ज्ञान रखेंगे, विस्तृत जानकारी रखेंगे तो बच्चों के हर जो उनके क्वेश्चन है, उनके जो जुस्तुजु है, उनके जो सीखने की चीजें हैं उनको हम क्लियर कर सकेंगे। अगर हम 10 ही चीजों पर हम अपना फोकस रखते हैं तो हम बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं बता पाए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि एक आइटम हमारे उसमें किट में है जियो बोर्ड, तो जियो बोर्ड के बारे में अगर मैं भी यही सोचूं कि जियो बोर्ड के बारे में जो एनसीईआरटी है उसने केवल दो चीजें बताई हैं, आकृति बनाना और उसका क्षेत्रफल निकालना, तो बात जमी नहीं। मैंने क्या किया है, मैंने उसी जियो बोर्ड में मैंने उसमें 7-8 चीजें ढूंढ ली हैं और उनको मैं धीरे धीरे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपने साथियों को शेयर कर रहा हूँ ताकि वो उन चीजों को देख सके। एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और यही तो अलग पहचान बनाएगी हमें। अगर हम भी सबकी तरह से केवल दो ही चीजों पर फोकस रखेंगे तो फिर वो शिक्षक और हम में अंतर क्या हो। तो टीचर को जो है अपनी पहचान बनाने के लिए अलग से अध्ययन करने की जरूरत है।
0: तो शिक्षक को भी शिक्षा में अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए, उसे भी पढ़ते रहना चाहिए, उसे भी संशोधन करते रहना चाहिए, शोध करते रहना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जब पढ़ाने जाए तो बच्चों के हर प्रकार के सवालों का उसके पास जवाब होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ मुझे एक और सवाल पूछना था, जैसे ये मैं समझता हूँ एक हुनर की बात होती है कि ये हुनर हर किसी में नहीं होता। कई बार ये जो है ताए बंद हो जाते हैं लोग कि भाई हमें तो इतना ही करना है, तो इसलिए शिक्षक उसे बनना चाहिए जो वास्तव में चाहता है कि मेरे प्रयास से देश को एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी मिले। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना होनहार नहीं है, इस प्रकार की भावना के साथ वो शिक्षक नहीं बना है, जैसे कि आप बने हैं, आपको शिक्षक ही बनना था। कई बार लोग इस वजह से भी शिक्षक बन जाते क्योंकि एकमात्र वही जॉब बचा है उनके लिए करने के लिए, दूसरा कहीं पर जो उन्होंने ट्राई किया वो हुआ नहीं। तो मान लीजिए अगर कोई मजबूरन में या किसी का शिक्षक बनना पहली प्रायोरिटी या पहली प्राथमिकता नहीं थी, अब वो केवल कर रहे हैं, एक नौकरी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ऐसे में उनको अगर अपनी शिक्षण को बहुत ऊंचा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, मानते हैं कि वो बहुत अच्छे शिक्षक नहीं है लेकिन बहुत अच्छा शिक्षण देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे?
1: मेरा एक मानना है कि हम शिक्षक हैं या हम शिक्षक बने हैं या हम बनना नहीं चाहते थे और बन गए हैं, तो हमें अपने आप को नहीं सोचना, अपने आप को नहीं देखना, हमें उन बच्चों को के बारे में सोचना चाहिए जो बच्चे आज हमारे पास हैं। वो एक जैसे कह देते हैं कि एक मिट्टी है, गीली मिट्टी है कि आज उसको जैसा रूप दे देंगे कल सूखने के बाद वो मिट्टी ऐसी ही हो जाएगी। अगर हम अपनी चाहत के अनुरूप भी ना होते हुए हम शिक्षक बन गए हैं तो हमें उन बच्चों के बारे में सोचना है जो बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, कल को वो हमारे देश के कर्णधार बनेंगे, उस देश को संभालेंगे। और इन बच्चों से अगर आज हम बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छे से उन्हें गाइड कर देंगे, हमारे लिए वो बच्चा हो सकता है कि वो 2 साल हमारे पास रहे, 3 साल रहे। मैं जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर हूँ तो मेरे पास बच्चे 3 ही साल के लिए आते हैं, तो मेरे लिए तो वो 3 साल का मेहमान है, लेकिन वो 3 साल के अंदर ही जो मेरे पास से सीख कर चला जाएगा यहाँ, क्योंकि उसका वो छोटी उम्र का बच्चा है, वो यहाँ से 11 से 14 के बीच में रहता है बच्चा, या तो प्राइमरी वाले अध्यापक को याद रखता है या जूनियर वाले को याद रखता है।

0: बहुत कम ऐसे टीचर हैं होते हैं जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ाते हैं और बच्चे के याद रह जाते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन छोटी लेवल पर जो टीचर बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से उन्हें शिक्षा दे देते हैं, बच्चा उनको हमेशा सम्मान करता है और हमेशा याद रखता है। मैं भी आज अभी तक भी ये समझता हूँ कि मेरे वो सब टीचर याद हैं जिन्होंने मुझे छोटी एज में पढ़ाया था, आज भी मेरे याद है। मैं अभी पिछले 2 महीने पहले अपने एक स्कूल की तरफ से, जहाँ मेरा कॉलेज था, जहाँ से मैंने हाई स्कूल इंटर किया, वहाँ से जब मैं गुजरा तो मैं उस स्कूल के अंदर होकर आया। वहाँ मैंने बताया कि मैं 50 साल पहले मैंने यहाँ एडमिशन लिया था, तो वहाँ के वर्तमान प्रधान प्रिंसिपल थे, बहुत खुश हुए। उन्हें मैंने सारी बातें वहाँ की बताई, उस पीरियड की, सारे टीचर्स के बारे में बताया, बहुत खुश हुए। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम बच्चों को उसके बारे में सोचें, अपने लिए ना सोचें कि हम तो भूल सा टीचर बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम टीचर बने हैं तो कुदरत ने हमें बहुत अच्छा व्यवसाय दिया है, एक ऐसा व्यवसाय जहाँ हम समाज से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, हम देश के उस भविष्य से जुड़े हुए हैं जो आने वाले समय में हमारे देश को संभालना है।
1: तो दोस्तों, अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे आप शिक्षक हैं या आपके आसपास में कोई शिक्षक है, तो आपको सच में ये चीज मान लेना चाहिए कि ये बहुत ही उच्चतम व्यवसाय मिला है आपको। और जैसा कि मोहम्मद जी ने बताया कि कुदरत की आपको ये देन है कि आप भारत के भविष्य के साथ जुड़े हुए, देश के भविष्य के साथ जुड़े हुए, कई बच्चों की भविष्य, कई माता पिताओं की उम्मीदों के साथ आप जुड़े हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आसपास में आपके कोई एक शिक्षक हो, आज उस शिक्षक को बहुत ऊंची नजर से, बहुत सम्मान से देखने की जरूरत है। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा आपका दोस्त हो या आपका कोई रिश्तेदार हो जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो शिक्षक है, आज जरूर आप उसे याद कीजिएगा और याद करने के बाद उसे जरूर धन्यवाद भी दीजिएगा, क्योंकि उनकी ही बदौलत देश को बहुत एक ऊंचा और उम्दा भविष्य मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मतीन अंसारी जी से, जिन्हें भारत की भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं मोहम्मद जी से उनके इस राष्ट्रीय पुरस्कार की जर्नी के लिए। इस यात्रा का थोड़ा सा आप हमें बताएं, कैसे ये पुरस्कार आपको मिला और कैसा आपका ये अनुभव रहा, और आपको ही क्यों चुना गया ये तो हम समझ गए, क्योंकि आपने हमेशा से नवीनता को पकड़ा है और नवीनता को लेकर के आगे चले, लेकिन ये जो जर्नी है ये भी हम सुनना चाहेंगे।
0: जैसा मैंने सर बताया था कि हमारे यहाँ 2010 में एक टीम आई थी, हमारे मेरठ जनपद में वर्ल्ड बैंक की टीम थी, और उसको ये देखना था कि जो वर्ल्ड बैंक हमारे स्कूलों को पैसा देता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, क्या वो पैसा स्कूलों में लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा। तो क्योंकि उसे पूरे जनपद को देखना था, जनपद के कुछ सिलेक्टेड स्कूलों को अधिकारियों को दिखाना था, तो अधिकारी हमारे जिले के भी, मंडल स्तर के भी और स्टेट लेवल के भी एक महीना तक हमारे जनपद में रहे और उन सारे पूरे जनपद के स्कूलों को देखा कि कौन सा स्कूल टीम को दिखाना चाहिए। आखिर में हमारे स्कूल को और दो एक स्कूल को और जो प्राइमरी जूनियर थे उनमें से 3 स्कूलों को उन्होंने सिलेक्ट किया था, जिसमें एक हमारा भी स्कूल। और जब वो टीम हमारे स्कूल को देखकर गई, उसके बाद मुझे 2011 में ये देखते हुए कि भाई इनका, इन्होंने जो एक अलग काम किया है, अलग इन्होंने एक पहचान बना के रखी है, तो 2011 में 5 सितंबर को नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहाँ पर मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत एक गर्व का पल था, मेरठ जनपद से मैं अकेला शिक्षक था जिसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उस साल दिया गया।
1: तो जब आपने शुरुआत की थी शिक्षण की, तब कभी सोचा था कि ऐसे आपको एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त होगा?
0: नहीं, उस वक्त तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन क्योंकि मेरी सोच हमेशा से निराली वाली सोच में अपनी रखता था, जो भी मैं काम करता था उसमें मैं अपनी कुछ नई चीज जरूर रखता था, उसी को सोच चलते हुए जब मुझे 2002 में एक नया स्कूल दिया गया कि आप इस स्कूल को जो है शुरुआत कीजिएगा, तो उस स्कूल को मैंने बिल्कुल उसी तरह से मैंने सोच के चलाया कि जैसे ये प्राइवेट स्कूल होते हैं, अपने आप को चमका के रखते हैं, बच्चों की अटेंडेंस को करना, सफाई को रखना, तो उसी तरह से मैंने बहुत अच्छे से उस स्कूल को बना के रखा। एक दिन उस स्कूल के बाहर से हमारे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे वो गुजर के चले गए, और फिर मैंने उनको अपने स्कूल में एक दिन बुलाया, मैं आमंत्रित किया मैंने उन्हें कि आप हमारा

0: देखेगा सर।
1: तो आए तो मेरे से खुद उन्होंने ये कहा कि मैं एक दिन इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि ये प्राइवेट स्कूल होगा, ये तो मुझे आज पता चला कि ये तो हमारा अपना स्कूल है, बेसिक स्कूल है। तो और वही हमारे अधिकारी थे जिन्होंने फिर हमें आगे चल के बहुत आगे सराहा और हमारे काम।
2: तो ये जो आपने एक अनुभव बताया अपना, इस अनुभव में बहुत बड़ा एक कहानी छुपा हुआ है मोहम्मद जी, जैसे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो भेद है प्राइवेट स्कूलों में और जो सरकारी स्कूलों में जो ये भेद है, चाहे रख रखाव का भेद हो, चाहे साधनों का भेद हो, चाहे जो शिक्षक हैं उनमें भी जो भेद होता है, उनके वेतन में जो भेद होता है, ये बहुत मायने रखता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कौन से स्कूल में दाखिला कराएं। और कई बार ये बहुत बड़ा एक रीजन बन जाता है, एक कारण बन जाता है लोगों के चुनाव में और कई फैसले कर लेते हैं। आपको लगता है कि भारत सरकार के तहत जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी विद्यालय हैं, सबको अच्छा बनाना चाहिए या सब बने हुए हैं या लोगों के नजरिए में कुछ प्रॉब्लम है, आप इस विषय को कैसे देखते हैं?
0: देखिए आजकल जो समय है, इस समय हमारे बेसिक के स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं, अब वो पहले जैसे स्कूल नहीं है। अगर मैं आपसे 10-15 साल पुरानी बात करता हूँ तो वाकई मैं खुद ये महसूस करता था कि टीचर उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए। लेकिन आज समय बदल गया है, आज शिक्षक मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है और काम अब दिखने भी लगा है। अब पहले जैसी बात नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि हमारे समाज को भी हमारे जो सरकारी स्कूल है इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया और सफल रहे, वो आज भी सफल है। मेरी एक बेटी हायर सेकेंडरी कॉलेज में टीचर है।
2: तो आपके खुद के बच्चे भी शिक्षण की दिशा में ही गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता को देखा है एक अच्छे उम्दा शिक्षक बनते हुए?
0: एक बच्ची जो है ट्रेनिंग करके और सीटेट वगैरह करके वो सब इंतजार में है कि वैकेंसी निकला तो उसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो अच्छी मेरिट वाली लड़कियों में से है। लेकिन अभी हमारे यहाँ कुछ काफी दिनों से वैकेंसी नहीं निकली है, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कहीं वैकेंसी निकले तो उसका ज्वाइनिंग हो जाएगी।
2: तो आपके विद्यालय में हर प्रकार के लोग आते हैं ना, मतलब जो बच्चे हैं चाहे वो गरीब घर से आते हैं, थोड़े से अच्छे संभ्रांत परिवार से भी आते हैं, कुछ मध्यम परिवार से भी आते हैं, कुछ जो है सांस्कृतिक रूप से बहुत ही मजबूत धरोहर के साथ आते हैं, कुछ जो है जिनका सांस्कृतिक धरोहर के प्रति इतना रुझान नहीं है, कुछ जो है ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर माता पिता दोनों ही बहुत कठिन परिस्थितियों से पालना कर रहे हैं, कुछ जो है जहाँ पर ऐसी अवस्था नहीं है। तो आपके पास हर प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं आपके स्कूल में। आपने कभी देखा कि बच्चों में आपस में कई कुछ भेदभाव है या जो जातिवाद होता है कि भाई इन लोगों से बात नहीं करना या हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं, इस प्रकार का जातिवाद, या फिर बच्चियों को कम देखा हो आपने पढ़ते हुए, बच्चों को ज्यादा पढ़ते हुए देखा है कन्याओं की शिक्षा के प्रति, कौन कौन सी ऐसी चीजें आपने नजर में आपकी आई हैं और उनको आपने कैसे पार किया है वो जानना चाहेंगे?
0: सर हमारे स्कूल के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कहीं कोई जात पात ऊंच नीच वाली बात रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान अब तो नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके परिवार के बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ते थे। जो वर्तमान ग्राम प्रधान है वो तो नई एज के हैं, उनके बच्चे नहीं है। बस एक चीज मैंने महसूस की है, समाज के अंदर जहाँ किसी के पास दो पैसे हो जाते हैं तो वो ये समझता है कि अगर तुमने किसी अच्छे स्कूल में बच्चे को नहीं भेजा तो पड़ोसी ये कहेगा कि तेरे पास कुछ नहीं रहा। बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो भावना आ गई है कि बच्चा अगर बस में बैठ के स्कूल तक जाएगा तो फिर पड़ोसी का ताना नहीं मिलेगा, किसी से रिश्तेदार का ताना नहीं मिलेगा, ये चीज खत्म होनी चाहिए। जितने काम हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, जितने क्वालिफाइड टीचर हमारे पास हैं, इतने वहाँ प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं है। वहाँ टिप टॉप है, बिल्डिंग अच्छी है, उन्होंने अपने प्रांगण को अच्छा चमका के रखा है, ड्रेस उनकी अच्छी है, वो सब चीजें दिखती हैं। वहाँ बच्चा ट्यूशन भी पढ़ता है। हमारे

0: यहाँ का बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता, वो हमारे स्कूल की पढ़ाई पे डिपेंड है, क्योंकि माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है, उनके पास ट्यूशन के लिए तो पैसा है ही नहीं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है वो इस स्कूल में जो कुछ पढ़ रहा है वो ठीक है, लेकिन वो ट्यूशन अलग पढ़ रहा है। तो यहाँ फर्क हो रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चा है वो बहुत ही गरीब परिवार का है, जहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल से जाने के बाद अपने घर के परिवार के कामों में हाथ बटाते हैं। कोई खेती में काम हाथ बटाता है, कोई घर के कामों में हाथ बटाता है। तो यहाँ तो हमारे दोनों प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के अंदर जो अंतर है, बस वो यही आ रहा है कि हमारे गार्जियन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पैसे वाले नहीं है, उनके पास समय भी कम है, वो अपने काम में मजदूरी में लगे हैं, अनेक कारण बच्चों को उतना नहीं देखभाल करते जितने जो अमीर फैमिली के लोग हैं, वहाँ शिक्षित भी हैं, उनके पास पैसा भी है, सब साधन है। तो दोनों में यहाँ फर्क हो जाता है। नहीं तो इस सरकारी स्कूलों के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और अब तो गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, बहुत अलग अलग अलग तरह की जो पहले सुविधाएं स्कूलों में हमारे सरकारी में नहीं होती थी अब मौजूद हैं। अब बहुत सारी सुविधाएं बहुत स्कूलों के अंदर हमारे मौजूद, कंप्यूटर्स वगैरह ये अच्छी सब चीजें अब सब जगह मौजूद है, सब हर तरह की फैसिलिटी स्कूलों के अंदर अब मिल रही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: तो ये जो आपने बात कही कि अभिभावकों के अंदर ये धारणा बदलनी चाहिए कि बच्चा अगर महंगे स्कूल में जाएगा तो मेरा रुतबा बना रहेगा मेरे आसपास, मेरे पास पड़ोसियों में, ये जो धारणा है, ये धारणा की वजह से हमारे सरकारी स्कूल में जो शिक्षकों का धरोहर है, जो इतने गुणी ज्ञानी हैं, उन तक बच्चे पहुंच नहीं पाते, और फिर खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, और उसका बच्चों पे प्रेशर भी होता है क्योंकि उन्हें स्कूल में भी पढ़ना है, फिर ट्यूशन में भी पढ़ना है। तो ये जो अवधारणा है लोगों के अंदर, इसको निकालने का आपको क्या लगता है, क्या तरीका है? क्या पब्लिसिटी होनी चाहिए, या शिक्षकों को जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, या क्या तरीका है कि ये जो अवधारणा है आपको लगता है ये कुछ समय में जा सकती है?
0: ये तो हम पीटीएम वगैरह करते हैं, अभिभावकों से संपर्क रखते हैं, तो बताते रहना हमारा कर्तव्य है बस। और हम तो यही कर सकते हैं, हम गार्जियन को समझा सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी भेजिएगा बच्चों को, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी समय लगेगा इन चीजों में, क्योंकि जो अमीर लोगों का स्टेटस वाली बात जहाँ आ रही है, वो एक तरह से एक हमारे और उनके बीच में जो एक वो होना चाहिए, वो एक कहीं ना कहीं एक बाधा खड़ी करती है। हम एक बार ऐसा हुआ कि कुछ वर्ग के बच्चे हमारे स्कूल में एक दो तीन साल तक नहीं रहे। मैंने देखा कि भाई इस वर्ग के बच्चे कहाँ चले गए, यहाँ तो हमारे इस वर्ग के बच्चे तो बहुत आते थे, धीरे धीरे कैसे। तो मैं कुछ परिवारों से मिला, तो वो बात मुझे एक ना कही कि इसलिए लोग दूसरे जगह भेज रहे हैं ताकि उनका पड़ोसी उन्हें ताने न देगा, इसलिए सब लोगों ने जो है प्राइवेट में भेजना शुरू कर दिया है। फिर मैंने उन्हें समझाया, तो अब फिर उसी वर्ग के जो है बच्चे फिर हमारे स्कूल में अब फिर से दिखाई देने लगे। तो ये जरूरी है कि हमें भी मतलब समाज से संपर्क बना के रखना है, हमें समझाना हमारी भी जिम्मेदारी।
1: ये आपने बहुत अच्छा कहा कि जिम्मेवारी बांटनी जरूरी है, जितनी जिम्मेवारी शिक्षकों की है अपने स्कूल के अवस्था को, व्यवस्था को ऊंचा बना के रखने में, उतनी जिम्मेवारी अभिभावकों की भी है कि वो अपने बच्चों का भविष्य वो ध्यान में रखते हुए जो श्रेष्ठ कदम है वो जरूर उठाए। केवल धन पैसा या आपसी विचारधाराओं और अपने रुतबे आदि के नशे में अगर वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, इससे बच्चों के भविष्य पे भी बहुत बड़ा और देश के भविष्य में भी बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि समस्या बन सकता है। भारत देश में घूमते घूमते आपने कई शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है, भारत के कई कोनों कोनों में आप गए हैं, कई प्रोग्राम्स किए हैं आपने, और शिक्षकों को अपने शिक्षण में कैसे नवीनता को धारण किया जा सके इस पर आपने बहुत काम किया है। तो जब आप पूरे भारत का चक्कर लगा रहे थे, तो आपको ऐसी कौन सी एक बात लगी जो पूरे भारत को भारत बनाती है? सभी विविधताएं हैं, लेकिन कोई एक चीज जो आपको नजर में आई है जो पूरे भारत को भारत बनाती है?
0: देखिए, हमें भारत को भारत बनाने वाली बात यह है कि हमें सबसे पहला काम देश प्रेम, हमें अपने देश से पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कोई भी ऐसा काम हमसे हमारे

0: परिवार से, हमारे किसी मिलने वाले से ऐसा ना हो कि जिससे हमारे राष्ट्र को किसी तरह से कहीं कुछ नुकसान पहुंचता हो, या किसी तरह से कोई भी ऐसा कार्य हमसे नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई हमारी राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्र प्रेम पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके। अगर हम इस तरह से हम रहते हैं, इस तरह के हम व्यवहार करते हैं, इस तरह का हम काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारे भारत को भारत बनाने के लिए पर्याप्त है।
1: जी, मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आप भारत के अलग अलग जगहों पे गए हैं, हर जगह की अपनी एक कहानी है, एक अपना बोली है, अपना सब कुछ विविध है, लेकिन कोई एक चीज जो आपने देखी हो जो पूरे भारत को एक बनाती है, जो हर जगह सेम लगी आपको?
0: सेम लगना, इसके लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या होना चाहिए। तो बच्चे सब जगह के इसी तरह के होते हैं जैसे हम अपने देख रहे हैं। मैं अगर कश्मीर गया हूँ तो मैंने उसी तरह के बच्चे वहाँ देखे हैं। बच्चों ने जो है बहुत अच्छे से इंटरेस्ट, उन्हें ये लगा कि एक यूपी का बंदा हमारे पास एक चीज को शेयर करने के लिए आया है, तो वो उन्हें हमें छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमसे चीजें बता दो, ये और बता दो सर, ये और बता दो, ये और बता दो। इस तरह का बच्चे तो जहाँ भी जाते हैं सब सीखना ही चाहते हैं। मैंने YouTube पे चैनल नहीं बनाया था, तो मैं जब अलग अलग जगह पे जाता तो बच्चे जैसे खुद कहते थे सर आपका YouTube चैनल भी है। तो मुझे उन बच्चों के कहने के बाद फिर उस बनाना पड़ा कि भाई हाँ चलो, फिर मैंने उसे बनाया क्योंकि समय की मांग है तो करना भी चाहिए।
1: और इस YouTube चैनल के जरिए बच्चे जो दूर दूर पे हैं वो भी आपको देख सुन पाएंगे, सीख पाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके YouTube चैनल का नाम बताएंगे तो हमारे जो श्रोता है वो भी ढूंढ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं।
0: मैंने उसका नाम रखा है अंसारी कॉर्नर।
1: अंसारी कॉर्नर, तो दोस्तों अगर आप YouTube देखते हैं और YouTube पे सर्च कीजिएगा अंसारी कॉर्नर, तो आपको मिलेगा बहुत सारा ढेर सारा मजेदार ज्ञान का पिटारा, जिसको खोल करके आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। मोहम्मद जी, जब आपने बताया कि भारत को एक करने वाली वो एक खास बात यह है कि भारत का हर बच्चा एक जैसा ही है, एक जैसा उत्सुक है, एक जैसा एनर्जेटिक है, एक जैसी जिज्ञासा रखता है, एक जैसा व्यवहार करता है, इससे एक बहुत बड़ी उम्मीद जगती है कि भारत के बच्चे जो है वो भेदभाव से परे अच्छे से फल फूल रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: भेदभाव वाली जमीन में अगर बच्चे बड़े होंगे तो वो भी आगे चलकर के भेदभाव को ही बढ़ावा देंगे, लेकिन अगर आपको ये नजर आया है कि पूरे भारत में बच्चे तो एक जैसे ही होते हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
0: जी बिल्कुल, बच्चे तो मैंने देखा है कि सब जगह व्यवहार सबका एक जैसा है, भाषा भले ही अलग है, उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, लेकिन बच्चों के अंदर वही जिज्ञासा हमारे यूपी में है तो वही दूसरे जनपद में है, वही हरियाणा में है, वही उत्तराखंड में है और वही कश्मीर के अंदर है, तो इसी तरह की चीजें हैं।
1: जी, तो लास्ट में जाते जाते हम आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, जिसमें मैं आपसे फटफट कुछ सवाल पूछूंगा और आपको एक एक शब्द में उनका जवाब देना होगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: ठीक है। तो पहला सवाल ये है, शिक्षक कौन है?
0: शिक्षक वही है जो दूसरों के लिए जीता है।
1: वाह,
0: दूसरों के लिए
1: सुंदर। शिक्षा क्या है?
0: शिक्षा वो है जो हमारे जीवन को एक तरह से कोमल बना देती है, हमारे जीवन को के अंदर की कठोरता को, अवगुणों को मिटा देती है, दूसरों के लिए हमें समर्पित रहना सिखा देती है।
1: शिष्य कौन है?
0: शिष्य वो है जो हर समय सीखना चाहता है। अगर मैं आज 63 की एज में हूँ, लेकिन मैं आज भी सीखना चाहता हूँ और सीखता हूँ। अगर हम सीख रहे हैं तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम जीवन पर्यंत सीखते हैं, हमेशा सीखते रहे।
1: सुकून क्या है?
0: सुकून जब हमारा माइंड किसी चीज से सेटिस्फाई हो जाए, हमारे हमें एक तरह से किसी चीज जिज्ञासा हमारी शांत हो जाए, हमें उस वक्त हमें नींद भी अच्छी आएगी, हमें सब चीजें दुनिया अच्छी लगेगी। अगर दुनिया अच्छी लग रही है, नींद अच्छी आ रही है, तो सुकून है। अगर हमारे पास दौलत तो बहुत है, सब चीजें हैं, लेकिन ना नींद आती है, ना हम उसे खाना पेट भर कर खाया जाता है, तो हम वो सुकून है ही नहीं। सुकून का मतलब है बढ़िया खुश दिल खुश रहना।
1: जी, सेवा क्या है?
0: सेवा जब हम दूसरे लोगों को के लिए काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, वही सेवा। अगर हमारे पीछे कोई स्वार्थ जुड़ा है काम करने के लिए, तो वो सेवा नहीं। सेवा निस्वार्थ।
1: प्यार क्या है?
0: प्यार जब हम किसी को अपना लेते हैं तो, और वो हमारे अंदर बस जाता है,
1: जो अपनापन
0: आ जाता है और दिमाग निकालने से भी नहीं निकलता, वो है।
1: तो प्यार मतलब अपनापन, जब आप किसी को अपना समझ लेते हैं तो वही प्यार। शांति क्या है?
0: शांति जब कोई किसी से, किसी को किसी से नुकसान ना पहुंचता हो, बिल्कुल हर कोई ये समझ ले कि मुझे इस शहर में, इस गली में, इस देश में, इस जगह पर, मैं अगर कहीं बाहर भी बैठ जाऊंगा, रात में भी अगर सफर के लिए निकल जाऊंगा, तो मुझे कोई खतरा नहीं है, वो है।
1: भारत क्या है?
0: भारत एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत तरह के फूल हैं, और यही हमारी एक भारत की अलग स्पेशल पहचान है। अगर इसमें अलग अलग तरह के फूलों को निकाल के हम एक ही फूल लगा, एक ही तरह के लगा लेंगे, तो वो हमारा जो भारत है वो अलग हो जाएगा। जैसा हम भारत हमेशा देखते आए हैं, वो एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत तरह के फूल खिले हुए हैं और हमेशा खिले रहेंगे।
1: आखिरी सवाल, मोहम्मद मतीन अंसारी कौन है?
0: मोहम्मद मतीन अंसारी एक ऐसा शिक्षक है जो देश के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, और जब तक सेवा में है तब तक तो करेगा ही, लेकिन 1.5 साल बाद जब मैं सेवा से मुक्त हो जाऊंगा तब भी मैं समाज के लिए ये सब चीजें करता रहूंगा, बच्चों को बताने की, समझाने की, टीचर से संपर्क करने की, विज्ञान के कार्यक्रमों में आने जाने की काम मैं करता रहूंगा, और जो मुझे सीखना चाहिए उसे भी सीखता रहूंगा।
1: तो सुना दोस्तों, आज के यशस्वी भारत कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं मोहम्मद मतीन अंसारी जी, जिन्होंने अपने सुंदर शब्दों में ये बात कह दी कि भारत एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते के में जो महक रहे फूल हैं वो हम सब हैं। हर एक को आवश्यक है कि अपने पे ध्यान दे। अगर हम अपने पे ध्यान रखेंगे तो हम हमारे पूरे गुलदस्ते का ख्याल रख सकते हैं, और जैसे कि मोहम्मद जी खुद अपने पे ध्यान रखते हैं, जैसा उनका मानना है कि मैं एक शिक्षक तो हूँ लेकिन मैं एक शिष्य भी हूँ और मैं हमेशा सीखता रहूंगा। इसलिए सीखता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है इस शिक्षण से, इस सीखे हुए हुनर से मैं मेरे देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो बड़े दिल लगा करके सीखिएगा, क्योंकि उस हुनर से आप पूरे देश पे कुछ न कुछ जादू जरूर बिखेर सकते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज हमारे बीच में थे मोहम्मद मतीन अंसारी जी, जो कि मेरठ जिले में सेवारत हैं, और एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने कई शिष्यों के साथ साथ, कई छात्रों के साथ साथ कई शिक्षकों के जीवन में भी बदलाव लाया है। कैसे विज्ञान में ओरिगामी को जोड़ करके और अपने विद्यालय को श्रेष्ठतम श्रेष्ठ विद्यालय बनाने में उन्होंने मेहनत की है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया था। आज हम बात कर रहे थे मोहम्मद मतीन अंसारी जी से। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसी एक नए मेहमान के साथ, लेकिन आपका जुड़े रहना बहुत जरूरी है, इसलिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा रेडियो मधुबन 107.8। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मोहम्मद जी ने बताया, कुछ न कुछ जरूर सीखते रहिएगा, सीखते रहना ही जिंदा होने की निशानी है। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: की खबर आओ पापा जी इधर आओ मामा जी इधर सुन दुनिया की खबर।
1: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंदवान।
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों के गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया विषय लेकर आया हूं और आज के विषय निमित्त निर्माण और निर्मल पर आपसे अपना चिंतन शेयर करूंगा।
4: आज हम ऐसे तीन शब्दों पर विचार करने जा रहे हैं जो जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, निमित्त, निर्माण और निर्बल। तीनों शब्द दिखने में सरल हैं, पर इनके भीतर छिपा है गहरा आध्यात्मिक अर्थ। पहला सूत्र है निमित्त। निमित्त का अर्थ है माध्यम बनना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू केवल निमित्त बन जा, बाकी कार्य मैं करूंगा। जब हम खुद को कर्ता मानना छोड़ देते हैं और यह मान लेते हैं कि हम केवल ईश्वर के हाथ

0: का साधन है, तब जीवन से अहंकार समाप्त हो जाता है, हमारे कार्य सेवा बन जाते हैं और जीवन एक दिव्य यात्रा। दूसरा सूत्र है निर्माण। निर्माण का मतलब केवल घर या मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि विचारों का, संस्कारों का और संबंधों का निर्माण करना है। हर सुबह जब हम एक शुभ विचार रचते हैं, वह विचार पूरे दिन को रोशन कर देता है। एक अच्छा शब्द, एक दयालु कर्म, यही सच्चा निर्माण है। जब हम रचनात्मक होते हैं तो हम नकारात्मकता से ऊपर उठ जाते हैं। तीसरा सूत्र है निर्मल। निर्मल का अर्थ है पवित्रता, साफ मन। जैसे निर्मल जल में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही निर्मल मन में ईश्वर का दर्शन संभव है। जब हम मन से क्रोध, ईर्ष्या और लालच को मिटा देते हैं तो भीतर प्रेम, शांति और आनंद का सागर भर जाता है। निर्मल व्यक्ति जहां जाता है वहां वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता है। अगर हम इन तीनों सूत्रों को जीवन में उतार लें, निमित्त बने, अहंकार छोड़कर ईश्वर के साधन बने, निर्माण करें यानी शुभ विचारों और कर्मों से जीवन सजाएं, निर्मल बने अर्थात अपने मन को स्वच्छ और पवित्र रखें, तो हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, हर कार्य सेवा बन जाएगा, हर विचार सृजन बनेगा और हर भावना प्रेम में बदल जाएगी। आइए आज हम सब यही संकल्प लें कि हम निमित्त भी बनेंगे, निर्माण भी करेंगे और निर्मल भी रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनीरे आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।

0: आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: लास्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ तो किसी को एक्सेप्ट कर लो या उसे छोड़ के आप चले जाओ।
2: राइट right.
1: ठीक है, लेकिन छोड़ के चले जाने पर एक और चीज मुझे दिखी, नेवर लीव अ ट्रू रिलेशन फॉर फ्यू फॉल्ट्स। नोबडी इज परफेक्ट।

0: And at the end, affection is always greater than perfection.
1: Affection is greater than perfection. लेकिन हमने आज priority चेंज कर दी है. हम सारा दिन perfection ढूंढ रहे हैं. चाहे लोगों में perfection, चाहे situations में perfection, चाहे काम किस तरह किया जाए उसमें perfection. एंड वो परफेक्शन ठीक है, हमें अपना बेस्ट करना था, लेकिन वो परफेक्शन ढूंढने के प्रोसेस में हम अपनी अफेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी परफेक्शन की स्थिति से हिल जाते हैं. वी शिफ्ट ना, वी वर परफेक्ट, वी नीड टू कम बैक टू परफेक्शन. लेकिन औरों को परफेक्ट बनाने के प्रोसेस में या औरों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करने के प्रोसेस में हम अपनी परफेक्शन से कितना दूर होते जाएंगे. एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने अफेक्शन प्यार की एनर्जी ब्लॉक होती जा रही है. तो थोड़ी सी इक्वेशन को सिर्फ चेंज करना पड़ता है. दीज आर इक्वेशंस ऑफ वे ऑफ लिविंग. ये इक्वेशन ऑपोजिट हो गई तो जीवन की क्वालिटी ऑपोजिट हो गई. आज हमारी इक्वेशन होनी चाहिए थी कि मेरे मन की स्थिति, लोगों के मन की स्थिति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. फिर इसके बाद जो काम हम कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी वो होनी थी. आज हमने कहा काम परफेक्ट होना चाहिए. हम डिस्टर्ब हुए तो कोई बात नहीं, सामने वाला डिस्टर्ब हुआ तो कोई बात नहीं, काम तो परफेक्ट होना चाहिए था ना. तो काम को ऊपर प्रायोरिटी दे दी.
0: रिजल्ट ओरिएंटेड
1: बट रिजल्ट ऑफ वॉट? Result of the work that we were doing, not result of the people involved in the work. आज अगर हम देखें, चाहे offices हैं, चाहे घर में staff से आपने कहा, चाहे बच्चों से, काम हो जाए, चीजें हो जाए, सब सही हो जाए, उसके process में मेरे मन की स्थिति disturb हो जाए, सामने वाले के मन की स्थिति disturb हो जाए, कोई बात नहीं. क्योंकि priority was काम हो जाए. Equation उस direction में चली गई. आज काम हो गए, अचीव कर लिया इतना कुछ, प्रोग्रेस इतनी सारी कर ली, लेकिन प्रोग्रेस एट व्हाट कॉस्ट? ये प्रोग्रेस एक बहुत बड़ी कीमत लेके आई अपने साथ. बिकॉज इस प्रोग्रेस को करते समय हमने अपनी स्थिति को और सामने वाले की स्थिति को प्रायोरिटी नहीं रखा कि हाउ आई एम फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग, इट डजेंट मैटर. आई विल शाउट, यू विल गेट हर्ट, इट डजेंट मैटर. वर्क शुड गेट डन. काम हो जाना चाहिए. मैंने गुस्सा किया तो क्या हुआ? आप हर्ट हुए तो क्या हुआ? आपको हर्ट होना इज फाइन, आपकी गलती थी, और आपने गलती की तो मेरा गुस्सा करना नेचुरल था. ये सब इक्वेशंस बना के प्रोग्रेस अचीव की, बट इट हैज कम एट अ वेरी बिग कॉस्ट. वी लॉस्ट आवर हैप्पीनेस, हेल्थ एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स जस्ट टू अचीव दिस प्रोग्रेस.
0: बट यहाँ परफेक्शन में जो चाहते हैं हमें किसी
1: व्यक्ति के अंदर परफेक्शन,
0: हाँ, हस्बैंड वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से, तो वो परफेक्शन एक्चुअली मैं अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा हूँ कि एम आई परफेक्ट.
1: वो इसलिए हम अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने सोचा मेरा मन परफेक्ट रहे. मेरा मन परफेक्ट रहे
0: मतलब मेरा मन नॉन अनडिस्टर्ब्ड रहे, डिस्टर्ब ना,
1: मतलब स्टेबल रहे, परफेक्ट रहे. वो तो तभी होगा ना जब सब मेरे अनुसार सही चलेगा.
0: ओके, बट दैट इज नॉट पॉसिबल.
1: बट दैट्स नॉट ट्रू.
0: But that's not possible.
1: But that's not true also.
0: क्योंकि मुझे हर एक को लगेगा ही नहीं कि मेरे अनुसार चल रहा है.
1: And most important, मेरे मन की स्थिति उन पर dependent है ही नहीं. It's not true.
0: क्यों?
1: क्योंकि मेरे मन की स्थिति तो मेरे ऊपर dependent है.
0: कमाल कर रहे हैं.
1: क्यों?
0: मैं आपसे बात करते करते उठ के चला जाऊँ.
1: हाँ.
0: तो बोलेंगे ये शूटिंग छोड़ के कहाँ चले गए?
1: हाँ, तो मैं बोलूंगी ये शूटिंग छोड़ के चले गए, कोई बात थी? फिनिश्ड.
0: It's not so simple in life.
1: It's more simple.
0: मैं बोलूंगा ये प्रोफेशनलिज्म है, कोई तरीका है, कुछ बोल के दर जाओ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उठ के चले गए बैठे बैठे. What's happening here?
1: ये दोनों options possible है ना?
0: This is natural what I am talking.
1: This
0: Anybody
1: is natural for me what I am talking.
0: No,
1: but we can shift from this to what second option we have created right now. आप भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, अब भी. ये भी नहीं कि 10 दिन बाद या साल बाद.
0: कैसे?
1: चूज करें कि अब नेक्स्ट टाइम जब कोई गलती करेगा या कोई एकदम से उठ के चला जाएगा या कोई अनप्रोफेशनल बिहेव करेगा, आई विल जस्ट टॉक अबाउट इट विद कामनेस,
0: पीस,
1: फाइंड आउट क्या हुआ.

0: ऐसा किया एंड उनको डायरेक्शन कि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा नहीं करना है. मेरे मन की स्थिति उनके चॉइस से नहीं, मेरी चॉइस से चलती है. उनको परफेक्ट बनाने में, उनके अंदर परफेक्शन ढूंढने में, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म ढूंढने में, ये सब कुछ करने में मैं हिल जाऊं तो देन इट्स नॉट वर्थ इट. हाँ, मैं स्थित होकर फिर उसको ढूंढूं और करवाऊं, दैट्स द वे टू डू इट. ये भी नहीं है कि फिर मैं अपनी स्थिति में स्थित हो जाऊं तो कोई काम करे नहीं करे, ठीक करे नहीं करे, आई विल नॉट से एनीथिंग, दैट्स ऑल्सो नॉट द वे. इसीलिए हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ साथ साथ. प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं और स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी पे स्थित नहीं है, उसमें भी मजा नहीं है. सारा दिन सिर्फ कहेंगे मेडिटेशन कर रहे हैं, पीसफुल रहेंगे, लेकिन कर्म में नहीं आएंगे, उसका भी मजा नहीं है.
1: डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं फिर आप दुनिया से कि भाई जो होए होए, कोई गलत कर रहा है करे, ऐसे थोड़ी होना है. आपने जो बोला अभी कि प्रैक्टिकल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाना है.
0: हाँ, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल बनाना है.
1: हाँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है मतलब उस तरह से जीना है,
0: वही जीवन जीने का तरीका बनेगा. अभी डिफरेंट क्यों करा?
1: तो सिंपल टर्म में, जैसे इफ आई एम राइट, आप बताइए कि पहले मैं ये सोचूं कि ये भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ, बोथ आर डूइंग देयर रोल्स, प्लेइंग देयर रोल्स,
0: राइट.
1: तो यहाँ से शुरू करें,
0: यहाँ से शुरू करें एंड फिर मेरे जीवन का लक्ष्य है, पर्पस ऑफ माई लाइफ, कि मैं आत्मा अपनी स्थिति को भी परफेक्ट रखूं. ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर मेरी स्थिति से मैं औरों की स्थिति को भी ठीक रखूं, ये मेरी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर हम दोनों मिलके परिस्थिति को ठीक करें, ये हमारी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी.
1: वेरी नाइस.
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी शुड बी सेट, सेल्फ, पीपल एंड देन वर्क. आज प्रायोरिटी क्या हो गई?
1: वर्क,
0: फिर पीपल, फिर सेल्फ. ऑर्डर चेंज हो गया.
1: वर्क फिर पीपल है, वर्क वर्क वर्क देन पीपल देन.
0: तो वो वर्क वर्क वर्क में इतना चला जाता. सो जितना हम स्टेबिलिटी में स्थित रहेंगे, हमारी वाइब्रेशन से काम होते हैं. हमारी वाइब्रेशन सिर्फ लोगों पे नहीं, प्रकृति पर, जड़ चीजों पर, हर सिचुएशन पर असर डालती है. डिस्टर्ब्ड वाइब्रेशन से जब हम काम करते हैं तो काम पे भी उसका असर पड़ता है. जो काम में एक स्मूथनेस होनी चाहिए, खत्म होती है. हम एक मेहनत करके काम करते हैं, जिसके लिए परमात्मा कई बार हमें लाइन सुनाते हैं कि मोहब्बत में अगर रहोगे, लव योर सेल्फ एंड लव गॉड, अगर मोहब्बत में रहकर करोगे तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलेगी. आज मेहनत ज्यादा, सफलता कम. बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतनी सफलता प्राप्त करने के लिए आज, क्योंकि वी आर नॉट अलाइंड विद द सेल्फ. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए. सेल्फ का ध्यान रखना मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों का ध्यान रखना मेरी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर मिलकर हम काम का ध्यान रखेंगे तो हम रियली कलयुग से सत्ययुग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. इट विल शिफ्ट एंड वी कैन ऑल डू इट. और इसीलिए जैसे उसने कहा, अफेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन.
1: ब्यूटीफुल ना?
0: वेरी नाइस ना? इतनी छोटी छोटी लाइन्स होती है.
1: हाँ, और छोटी छोटी बातों के लिए एक रिश्ता खराब करना है
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड इन छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप से रिश्ता खराब करना, अपने आप के साथ रिश्ता.
1: ये छोटी बात बुरी लगती क्यों है?
0: कौन सी छोटी बात बोल रही
1: है? किसी की भी कोई छोटी बात हम उसको एक्सेप्ट करके क्यों नहीं कर लेते? ये सही है. जैसे देखिए, अभी यहाँ कितने चिड़िया में सोच रहा था बैठ के, एक बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, एक कौवा बोलता जा रहा है, एक सुबह 6 बजे से बोल रहे हैं, और एक शांत, ये जो व्हाइट क्रेन्स है इधर, बगुला टाइप जो भी कहते हैं इनको, आराम से बैठ के अपनी शूटिंग देखते हैं, चले जाते हैं, वॉक करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, क्वाइट. सबके कितने अलग अलग नेचर्स हैं,
0: राइट.
1: और कभी मैंने ये सोचा नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है. एक बार भी मैंने ये नहीं बोला दिस वर्ड इज बैड और दिस वर्ड वाई की करती रहती है.
0: दिस इज
1: भी नहीं आया.
0: दिस इज एक्सेप्टेंस. जब थॉट ही नहीं आता एक्सेप्टेंस की, हम इस स्थिति पर पहुंचेंगे जब थॉट

0: ये नहीं आएगा।
1: बट ऐसा क्यों नहीं होता है इंसानों के साथ?
0: और उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाओ, वो भी हो जाएगा। हमारी ओरिजिनलिटी तो वही है कि इंसानों के साथ भी हम ऐसे ही होंगे, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये गंदा है, ये खराब है, ये ऐसा। नो, जैसे ही हमने इस रास्ते शुरू किया ना चलना, वंस वी स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस रोड, वी विल रीच दिस स्टेज विच यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ।
1: लास्ट टाइम आपके 2-3 होमवर्क मैंने किए, उसके बाद मैं गोल्फ खेलने गया। गोल्फ खेलने गया तो एक अमेरिका से कोई ऐसी गेस्ट आया था, तो बोला कैन आई जॉइन यू ऑल। ही गिव मी सच अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। ही सेड मैं सोच के हैरान हूँ कि आपका बॉल जब पानी में गया आप चिड़े नहीं, आपके शॉट्स रॉन्ग लगे आप चिड़े नहीं, आपने पट मिस किया छोटा सा, यहाँ से छोटा, आप चिड़े नहीं। आई सेड, ही सेड हाउ कैन यू डू दैट?
0: सी, और पहले कभी चिड़ते थे इन चीजों पे?
1: लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं ऐसा नहीं किया।
0: नहीं, लेकिन पहले कभी चिड़ते
1: थे? पहले बॉल जाता तो मैं आधा आधा घंटा, अगला होल भी खराब होता था मेरा।
0: दिस इज,
1: मैं अपने कैडी को डांटता था तूने रॉन्ग क्लब दे दिया।
0: अब पता नहीं चला ना ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ।
1: नहीं, बट आफ्टर दिस मैन टोल्ड मी कि मैंने ये बिहेव ऐसा नहीं किया, तब मुझे चला, पता चला कि अच्छा मैं ये पाथ पे जो चलने का सोच गया, इट वॉज नॉट डेलिबरेट।
0: इट इज नॉट डेलिबरेट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन डेलिबरेटली। लेकिन छोटे छोटे पुरुषार्थ जो किए होते हैं ना, छोटे छोटे चीजों में, और रोज जब मेडिटेशन किया होता है तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है, अब वो आत्मा का स्वरूप में आने लग जाता है। अब जब परिस्थिति आएगी, जैसे पहले ही भी डिस्कस हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: एंड ऑल्सो ही सेड एंजॉयड प्लेइंग विद यू,
0: सी, विच मीन्स अपनी स्थिति अच्छी तो सामने वाले की स्थिति अच्छी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम अच्छी। क्योंकि जैसे आपने कहा, पहले जब मैं इरिटेट होता था तो अगला भी जो हिट करना था वो भी खराब हो जाता
1: अगला
0: था।
1: अगला नहीं सिस्टर, बाद में नहाने धोने, कपड़े बदलने, शाम घर तक जाने, घर में जाने के बाद भी
0: इरिटेबल।
1: वो शॉट मैंने इतना खराब खेला, वो इतना मार दिया मैंने, मैं थोड़ा सा कर लेता और तो हो जाता। और उस डिस्टर्ब स्थिति में 50 बॉल लेके मैं उसको प्रैक्टिस करने जाता तो वो भी खराब होता।
0: जब तक स्थिति ठीक नहीं, जब तक स्थिति ठीक नहीं, यहाँ से सब कुछ रेडिएट होकर बाहर जाना है। यहाँ से इट इज लाइक पावर सप्लाई, और फिर इतने सारे अप्लायंसेस जब घर में है, जब पावर सप्लाई में ही फ्लक्चुएशन है, मेन पावर सप्लाई में फ्लक्चुएशन
1: नहीं बदली, मेरी प्रैक्टिस नहीं
0: तो
1: बदली,
0: वो अप्लायंसेस भी नहीं बदले,
1: टीचर भी नया नहीं आया, गोल्फ क्लब भी नया नहीं आया, लेकिन आपके होमवर्क से अच्छा। वो सबसे बेस्ट बात आई वांट टू रिपीट अगेन इज व्हाई इज इट दैट आई डिडंट इवन नो अनलेस टिल दिस मैन टोल्ड मी।
0: जैसे पहले हमें नहीं पता चलता था कि हम क्यों इरिटेट होते हैं,
1: okay.
0: हम कॉन्शियसली इरिटेट नहीं होते थे, इरिटेट हो जाते थे। अब हमें कॉन्शियसली पीसफुल नहीं रहना पड़ेगा, मतलब नेचुरली पीसफुल हो जाएंगे क्योंकि ग्रूव चेंज हो रहा है। एक बार थोड़ी सी भी अटेंशन रख ली ना ग्रूव बनाने में, उसके बाद हर टाइम थोड़ी अटेंशन रखनी है उस ग्रूव पे जाने के लिए, वो तो नेचुरली चला जाएगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, जैसे आपने अभी कहा कि वो गिल्ट, फिर वो उस चीज के बारे में सोचते ही जाना, क्योंकि हम में से मेजोरिटी आज ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑफिस में, ये गेम है। लेकिन जहां ऑफिस है, बिजनेस है, बहुत बड़ी चीजें स्टेक पे है, टारगेट्स है, यू नो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफिस में है, वो माइंड पे चलता ही जाता है। इट जस्ट गोज ऑन, नहीं मुझे ऐसे नहीं, नहीं उसको ऐसे नहीं, नहीं उसको। आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि वहां कुछ ऊपर नीचे हो जाए, नुकसान भी थोड़ा हो जाए, गेम भी खराब हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन यहां जितना ऊपर नीचे हो रहा है अभी, अगर हम जितना अटेंशन इस पर रखते हैं कि क्यों मेरे से एक वो बॉल गलत चली गई, जैसे आपने कहा क्यों मैंने इतना हिट नहीं किया, जितना अटेंशन इस पर और जितना इस पर सोच रहे हैं, सोचो अपने लिए उतना सोचे तो क्यों मैंने
1: होमवर्क किया ना अपने लिए, सोचे ना
0: क्यों हमने उनको क्रिटिसाइज किया, क्यों मैंने उनके लिए नेगेटिव सोचा, क्या ये राइट था? अगर हम एक गोल्फ की गेम के लिए इतना सोच सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसे हिट करता तो कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता, अगर मैं थोड़ा सा एक ऐसे सोचता मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिलता, अब करता हूं, अब करता हूं। अब जैसे आपने कहा, अगर मैंने गलत हिट किया तो मैं फिर 50

0: वर्ड निकाल के फिर प्रैक्टिस करता हूँ। अपने साथ ये करें, मैंने गलत सोचा किसी के लिए, मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, मैं अब 50 क्वालिटीज निकालता हूँ बैठ के उनकी
1: अच्छी वाली,
0: फिर सोचता हूँ उनके बारे में। लेट मी प्ले द गेम अगेन, दे हैव टू हैव क्वालिटीज, नो इट कांट हैपन, नोबडी कैन हैव ओनली वीकनेसेस। सो प्ले दिस गेम इनसाइड, ये करने से हम परफेक्शन की तरफ रीच कर जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे वो लाइन थी कि यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम एवरीबडी, ना या तो आप उनको एक्सेप्ट करो या उनसे अलग हो जाओ।
1: कितना अच्छे होंगे,
0: आज हम चूज करते हैं अलग होना।
1: कितनी शादियां कर लेंगे, कितनों से अलग होंगे, कितने स्टाफ चेंज करेंगे,
0: इन द सेंस कि ये नहीं कि हम बार बार ऑफिस बदल रहे हैं या बार बार स्पाउस बदल रहे हैं, नॉट लाइक दैट, लेकिन हम लोगों से
1: एटीट्यूड
0: कटे कटे हो जाते हैं,
1: एटीट्यूड
0: अपने एक अलग रहने लग जाते हैं। आज हम लोगों से ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी के साथ रहना पसंद करते हैं। आज हम एक्चुअल फ्रेंड से बात करने की बजाय फेसबुक पर या कोई ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्ट्रेंजर से चैट करना प्रेफर करते हैं, तो हम लोगों से दूर हो रहे हैं।
1: इवन फोन कॉल टेक्स सम करेज टू टॉक एंड से हेलो हैप्पी बर्थडे, इट्स सो इजी टू राइट ऑन द थिंग हैप्पी बर्थडे लव यू बाय, ये आप मुंह से नहीं बोल सकते इजीली, बिकॉज आपको उसकी बातें याद आती हैं। ये हाँ, मेरे भाई झगड़ा किया था, ये मेरी बहन ने उस दिन ऐसा बोला था, उसका बर्थडे है, अब मैं फोन उठाऊं और किस मुंह से उसको बोलूं, छोड़ो यार इसका मूड खराब होता है, लिख दो
0: मैसेज कर दो। हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं और हम अपने आप को अलग अलग करते जा रहे हैं। इसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम बच रहे हैं, वी थिंक वी प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ्स, कि लोगों से दूर होने से हमारी प्रोटेक्शन होती है। हम लोगों से दूर दो रीजन से हो सकते हैं, उनके संस्कार की वजह से, कई बार अपने संस्कार की वजह से भी, कि इनके साथ ना हमेशा मेरा या तो मुझे गुस्सा आ जाता है या तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, बेटर आई विल जस्ट कीप अवे। तो हम अपने संस्कार की वजह से भी कई बार लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जितना हम लोगों से दूर होंगे, हमारी अपनी एनर्जी सर्कुलेट नहीं होगी, इट विल नॉट मूव अनलेस आई कम इनटू इंटरेक्शन विद पीपल।
1: इवन इफ आई हेट अदर्स और माई सेल्फ, हेटेड तो अंदर से आई रही,
0: हेटेड तो अंदर से आई रही है, लेकिन अगर मैंने ये ऑप्शन चूज किया कि मैं लोगों से दूर हो जाऊं, बजाय कि ये ऑप्शन चूज करूं कि मैं अपनी थॉट्स को बदलूं, वी हैव टू चूज दैट ऑप्शन, लेकिन हमने चूज किया कि हम लोगों से दूर हो जाते हैं। लोगों से दूर होने से, सपोज मैं किसी से दूर हो गई, मेरी हेट की एनर्जी स्टॉप हो गई, ठीक है, मेरी स्टॉप हो गई, चलो मेरा बेनिफिट है, लेकिन लोगों से दूर होने से मेरी लव की एनर्जी भी तो स्टॉप हो गई।
1: सही बात,
0: अनलेस आई कम इन इंटरेक्शन, इसीलिए कहते हैं ना रिलेशनशिप्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में आने से ही, किसी आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज में आने से ही मेरी एनर्जी क्रिएट होती है और रेडिएट होती है।
1: हमारे सत्संग में मैंने यही सवाल पूछा था आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, तो उनका जवाब आया था कि देखो बदला नहीं लेना, बदल जाना,
0: बदल जाना, बदला तो नहीं लेना,
1: बदला मतलब कि टिट फॉर टैट, उसने ऐसा किया अच्छा बात नहीं किया मैं भी नहीं करूं, हाँ। उसने विश नहीं किया मैं भी नहीं करूं, तुम बदल जाओ।
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट, किनारा भी नहीं होना,
1: बदल जाना इन द सेंस अगेन पॉजिटिव,
0: हाँ। आज वी शुड नॉट चूज द ऑप्शन कि हम विड्रॉ हो जाएं उनसे,
1: एक्सेप्टेंस से बदलना।
0: रिलेशनशिप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, आज छोटे छोटे बच्चे भी बच्चों के साथ खेलने की बजाय टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, एंड इससे सोल पावर पर इफेक्ट आएगा। जैसे हम शरीर का कोई अंग यूज नहीं करते तो उसकी पावर कम हो जाती है, इसी तरह जब तक हम आत्मा की पावर को रिश्तों में यूज नहीं करेंगे उसकी पावर कम हो जाएगी।
1: इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आया, मेरे घर में बेटे का भी बेटा है, बेटी का भी है, तो दोनों को हम लोग ना एक लॉक चेयर्स में बिठा देते थे और एक एक के सामने आईपैड रख के वो देखते गेम्स खेल खेल के खाते थे। तो फिर मैंने एक दिन ट्राई किया, दोनों को खोल दिया, बिठा दिया, और वो आईपैड, नो गेम्स,
0: नो टेक्नोलॉजी।
1: तो जब हम मैं खिलाने गया तो वो उसके मुंह में डाल रहा है, वो उसके मुंह में डाल रहा है,
0: सी
1: सुखा अर्जुन का, विवान का, वो उसके मुंह में, मैं खिलाऊं तेरे को खिलाऊं, आपस में खिलाऊं, व्हाट अ चेंज,
0: व्हाट अ चेंज।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अरे बड़े मियाँ का हाल तो देखो, ये उम्र ये चाल तो देखो।

0: अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्रिय, किसी का मन न तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा।

0: तुम नहीं समझी कैसा खोना। उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जी की रुक्मिनी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दूं मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल मुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी, क्या ये दुख।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

अभिलाषा है सनम, किसे कहते हैं मोहब्बत ये बता मेरी कसम। न मैं समझू न मैं जानू अभिलाषा है सनम, किसे कहते हैं मोहब्बत ये बता मेरी कसम।

कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई।

घर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो मेरे खेत की मट्टी ने सोने की।

सुनो गजर क्या

ने कह दिया, नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया, नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमें

गैर को खबर न मिले, समझने वाला समझ ले। ये भी अंदाज है इस बात के इजहार का, हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का। नजर में कह दिया, नजर में कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आंख में दिल

एतबार टूट गया कि सब्र टूटने लगा। बहार बोलिए मौका नहीं इनकार का, हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया।

पो कुल कपन गंगा के धारे अपने

से नेपाल से राजस्थान से

0: अरे आनंद बाबू, आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
1: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ
1: गाओ।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी।

0: है तो
1: हाँ?
0: नारनवेली है तो
1: हाँ, कुछ कहा
0: जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए
1: सच।

करार का मेरे हाथों तो मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा सास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं आप।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की मिठास है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: है।
1: अरे पापा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है।
1: ना ना ना ना ना ना ना।
2: नहीं बापू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए।
3: इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटी, उठ आएगी अब सुनते सुनते आराम से सो जाऊंगा।
2: अच्छा बापू।

0: फल खाए ऐसा तोरी पतली कमर जैसे डगमग हो शराबी की नजर है।
1: फल खाए ऐसे तोरी पतली कमर।

0: कटोरे चुल्फ में फंस गया मोराजिया, रे नागन डस गई,
1: डस गई,
0: डस गई।

0: का बदन
1: तोरा फूल का बदन तोरा फूल का बदन
0: हो जीत लिया रूप वाली तूने मोरा मन
2: उड़ी छबने गजब की छोरी छोरी दिहानी बस गई
3: बस गई
2: धीरे
3: धीरे हाले हाले बस गई
1: है जिया हमारा घर वाला तेरे यार मैं ना फस गई।

श्याम की जय हो सियाराम की और जय हो बंबई धाम की। यह है

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है